मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हुरमुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार एल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में मातृ वंदना।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री

वंदना में अभी आपने समूह स्वर में मात्र वंदना सुनी। अब लीजिए सुनिए असित देसाई और हेमा देसाई के स्वर में माँ भगवती पुष्पांजलि श्रोत।

वंदना में अभी आपने मोहम्मद रफी के स्वर में ये भजन सुना। अब लीजिए सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में आरती।

अभी आपने अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में आरती सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 6:35 पर खेती किसानी का प्रसारण किया जाएगा। 6:40 पर होगा श्री रामचरित मानस गान। 6:50 पर आप सुनेंगे आज का चिंतन। सुबह 7:20 पर होगा हिंदी महक, इसमें सुनिए मुकेश

दिन का काव्य पाठ 7:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, 8:30 पर सुनिए संग्रहालय से, इसमें सुनिए गजानन माधव मुक्तिबोध से संस्मरण, इसमें सुनिए गजानन माधव मुक्तिबोध के संस्करण हरिशंकर परसाई से। 9 बजे होगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, इसमें सुनिए अरविंद कुमार से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसमें सुनिए फिल्म विवाह के कुछ गीत।

0: 10:05 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ मन का भाग 11। 10:10 पर सामुदायिक गान के प्रशिक्षण पाठ में सुनिए कन्नड़ भाषा का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार हैं B.R. गीता। 10:30 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 आपकी फरमाइश और 12:30 पर संग्रहालय से ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होंगे। 1:00 महिला सभा में सुनिए काजल सोनी से वार्ता सपनों का साकार करती महिलाएं। 1:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। 2:00 फिल्म संगीत 2:30 पर आपकी फरमाइश आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 युववाणी कार्यक्रम में सुनिए कॉफी हाउस आलेख होगा खुशी खान का। 5:40 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 6:00 भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में सुनिए राहुल अनुरागी से बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे ग्राम सभा इसमें सुनेगा धारावाहिक चिठिया देवर भौजाइकी का भाग 2। प्रस्तुति है शंभुदयाल अहिरवार की वाचन साहब सिंह सेंगर का। इसके अलावा राम नरेश नायक से सुने बुंदेली काव्य पाठ। आज की सीख का विषय है जहां धुआं वहां आग। 8:00 भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में 8:15 पर होगा फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:00 होगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं हम आपको बता दें 8:30 पर सुनिए संग्रहालय से इसमें सुनिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध के संस्मरण हरिशंकर परसाई से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती किसानी।
1: पंचो आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं नींबू।

0: उबरगी फसलन के बारे में। तो देखो भैया अबे चल रही है गर्मी और गर्मियन में जैसे ही नींबू को नाव लियो तो अपनी जीब में आउत है पानी और खासतौर से गर्मियों में पानी की भी जरूरत होते है। तो नींबू बरगी जो फसलें हैं पौधा हैं उनमें ये बेरा कौन प्रकार के कीट अपनी फसलन पे प्रकोप करत हैं उके बारे में हम आज अपन को बताएं। तो इसमें भैया एक कीट होते है उको नाम है एस्ट्रस सिल्टा कीट। ई कीट के जोन वयस्क प्रौढ़ और छोटे बच्चा होते हैं वे नींबू की पत्तियन खा और जो मुलायम उकी टहनी होती शाखाएं भैया उके अलावा फूलन को रस चूस के पौधा का बहुत ज्यादा हानि पहुंचा देते हैं। ई को प्रकोप ई दिनन पे ज्यादातर देखो जाते है। ई कीट के जो बच्चा होते हैं भैया वे शहद जैसो एक लिप लिपो तरल पदार्थ से भी निकालत है। इसे कहा होत की जो काली काली फफूंदी होत ना वह अपने पौधा के पत्तन खा फफूंदी के रूप में ढक लेते है। जिसे जो पत्ता है वे अपनी जो दैनिक क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है भोजन बनावे को काम है वो जो है बंद कर देते है और जब भोजन बने तो पौधा के पत्ता पीले पड़ जाए। तो ई की रोकथाम के लाने अपन का करने हैं कि 0.025% पैराथियन एक दवाई आउट है। कौन सी भैया 0.025% पैराथियन। अगर जब दवाई ना मिले तो 0.05% मेलाथियन दवाई को घोल बना के अपन का अपने पौधा पे जो है छिड़काव कर देने हैं। एक और कीट होते भैया उ बोले थे लीफ माइनर कीट। जो भी भैया ई बेरा नुकसान पहुंचाऊ थे तो ई कीट के जो अंडा होते हैं वे फटवे के बाद उनकी छोटी छोटी सी सुनिया निकल जाऊती है और ये जो छोटी छोटी सुनी है पौधा की जो छोटी पतली कोमल पत्ती होती है उनमें सुरंग बना लेती फिर पत्तियों को रस चूसन लगती और फिर उनमें जो भैया उनको जो हरो हरो पदार्थ है हीमोग्लोबिन के तत्व है उनका जो खावो शुरू कर देती जिससे कि पौधा का नुकसान होते है। तो ई की रोकथाम अगर ऐसे लक्षण अपन दिखाई दे रहे हैं और लीफ माइनर कीट को प्रकोप अपने पौधा पे है तो अपन ई की रोकथाम के लाने 0.025% पैराथियन या 0.1% BSC को छिड़काव अपन कर देने हैं। तो जब अपन देखें कि अपने नींबू वर्गीय फसलन में लीफ माइनर कीट को प्रकोप है तो अपन 0.1% BHC पाउडर को भड़काव जरूर करें। एक भैया होते हैं इनमें सफेद मक्खी। तो भैया ई कीट के जो बच्चा और प्रौढ़ होते हैं वे दो ही जो है नींबू वर्गी जो पौधे हैं जो फसलें हैं उनकी पत्तियों की निचली सतह से इनको रस चूसबो शुरू कर देते हैं। इनमें भैया कहा होते हैं कि जो पत्ती होती ना वे पीरी पीरी परके उसे ही सिकुड़ सन सी लगती है और फिर गिरन लगती। तो जब देखे कि अगर पीली पत्ती पर रही और गिर रही झर रही तो ऊके लाने अपन एक ही रोकथाम जरूर करने हैं। उमे भैया का करने हैं छोटी सी अच्छी सी दवाई है 250 ग्राम गुड़ लेने अपन का लेने एक पाव गुड़ और 5 किलोग्राम पानी में उखा घोल के अच्छी तरह से और उमे एक दवाई आउत है उकी कछु बूने अपन छिरका की सुई मिला लेने और 7 ग्राम जो दवाई है बकहाउत लेड आर्सेनेट है ना तो ईखा मिला के ईको एक जहरीलो चारो जो है खुली बोतल में अपनी बगैचा में या जहाँ निबुआ को पेड़ लगो है उते पे टांग देने हैं लटका देने भैया। तो जैसे ही अपन जो पूरा एक बोतल में भर के लटका है तो उखा उनका ऐसे गुड़ है कि नहीं और जहर भी मिलो उमे तो ये सब चीजें जब मक्खी आके खेहे और भैया मर जाए। तो ई प्रकार से अगर कहूं अपन पहचाने के सफेद मक्खी को प्रकोप है तो उमे ई दवाई का उपयोग जरूर करें और अगर कहूं अपन ने हमारी बताई भाई बातन पे ध्यान रख के नींबू वर्गी फसलन के लाने इन कीटन के प्रकोप खा समझ के बताई भाई दवाइयन का उपयोग करो तो निश्चित है कि अपन खा ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकते है।
1: अभी खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: अभी श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। स्वर था अनुराधा पौडवाल का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: योग्यता हर किसी में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। सामान्यता देश में साधारण योग्यता वाले अधिकांश व्यक्ति हैं और वे अपनी सामान्य सी योग्यता का किसी भी तरह उपयोग करके सामान्य जीवन जीते हैं। लेकिन यदि सामान्य सी योग्यता के साथ व्यक्ति के अंदर असाधारण लगन हो तो वो कुछ भी करने में सफल हो सकता है, क्योंकि कुछ भी कर सकने की लगन के सामने व्यक्ति की योग्यता बाधक नहीं बनती। समय के साथ उसके अंदर योग्यता स्वतः ही पनप जाती है। असाधारण लगन और सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति भले ही आज कुछ

0: न करने की स्थिति में दिखाई पड़े, लेकिन वे अपने जीवन में ऐसा कोई ना कोई रास्ता और मंजिल तलाश लेते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी होता है। व्यक्ति के पास यदि विशेष योग्यता और प्रतिभा है लेकिन काम करने की लगन नहीं है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपनी विशेष योग्यता व प्रतिभा का अहंकार होता है और वो उन्हें पर्याप्त प्रयास नहीं करने देता। कार्य के दौरान जब बाधाएं आती हैं तो विशेष योग्यता वाले व्यक्ति यही सोचते हैं कि उनकी बाधाएं उनके सामने कुछ भी नहीं है, वे उन्हें आसानी से पार कर लेंगे, जबकि सामान्य योग्यता और जबरदस्त लगन वाले व्यक्ति ये ज्यादा नहीं सोचते कि वे बाधाओं को कैसे पार करेंगे, बल्कि उसे पार करने में जुट जाते हैं और धीरे धीरे कई बाधाओं को पार करके जीवन में आगे निकल जाते हैं। एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध कहानी है खरगोश और कछुए की दौड़ की। इस दौड़ की प्रतियोगिता में योग्यता की दृष्टि से खरगोश कछुए से बहुत अधिक योग्य था, तेज दौड़ने वाला था और कछुआ बहुत ही धीरे चलने वाला, लेकिन तेज दौड़ने के अहंकार के कारण खरगोश काफी दौड़ने के बाद रास्ते में पेड़ की ठंडी शीतल छाओं में आराम करने लगा और सो गया, जबकि कछुए ने विश्राम की बात न सोची और लगातार धीरे धीरे चलता रहा। अंततः वो सोए हुए खरगोश से भी आगे निकल गया और उसने प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन नींद की झपकी ने उस खरगोश को हरा दिया। कछुए को भी ये वास्तविकता मालूम थी कि वो दौड़ में खरगोश से जीत नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी लगन के साथ लगा रहा। बस इसी लगन ने उसे दौड़ की प्रतियोगिता में खरगोश से आगे कर दिया। यदि व्यक्ति में असाधारण योग्यता के साथ लगन है तो वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। यदि साधारण योग्यता के साथ कार्य करने की लगन है तो वो जीवन में कुछ न कुछ विशेष कर ही लेता है। लगन की इसी खासियत के कारण आजकल कंपनी के मैनेजर भी ऐसे व्यक्तियों का चयन अधिक करते हैं जो भले ही साधारण योग्यता के हों लेकिन उनके अंदर मेहनत करने की लगन हो, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि ज्यादा योग्य लोग अपनी योग्यता के अहंकार के कारण मेहनत से कतराते हैं। लगन की विशेषता व्यक्ति की कमजोरी को भी उसकी ताकत में बदल देती है। इस बात को स्पष्ट करती एक प्रेरणादायक कहानी है। जापान के 10 वर्षीय बच्चे को जूडो सीखने का बहुत शौक था, लेकिन उसका बायां हाथ नहीं था, फिर भी वो अपने माता पिता से जूडो सीखने की जिद करने लगा। आखिरकार उसके माता पिता उसे मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के पास ले गए। गुरु ने उस पुत्र को देखा तो उन्हें अचरज हुआ। उन्होंने पुत्र से पूछा, इस हालत में तुम अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला कैसे करोगे? पुत्र ने कहा, ये बताना आपका काम है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराकर एक दिन खुद मास्टर बनना है। मार्शल आर्ट्स गुरु उसके जवाब और उसकी प्रबल इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उसे सीखने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों के बाद वो उसे अभ्यास कराने लगे, लेकिन पुत्र को ऐसा महसूस हुआ कि उसके गुरु दूसरे लड़कों को अलग अलग दाव पंच सिखा रहे हैं लेकिन उसे एक ही तरह की किक लगाने का बार बार अभ्यास करा रहे हैं। उसने गुरु से अपने मन की शंका जाहिर की थी, लेकिन गुरु ने उसे दूसरों पर न ध्यान देते हुए उसी अभ्यास में महारत हासिल करने के लिए कहा। सभी शिष्यों के सालों अभ्यास के बाद गुरु ने सबको बुलाया और कहा, अब एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएगी और जीतने वाले को सेंसेई की उपाधि दी जाएगी। नियत समय पर प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। पुत्र ने पहले दो मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच कुछ कठिन था, लेकिन कुछ संघर्षों के बाद वो विजयी हुआ। सेंसेई घोषित के बाद उसने गुरु से अपनी जीत का रहस्य पूछा। गुरु ने कहा, प्रतिस्पर्धा में जिस किक का तुमने इस्तेमाल किया है उससे बचने का केवल एक ही उपाय था, विरोधी का बायां हाथ पकड़कर गिरा दो, और तुम्हारा बायां हाथ है ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे प्रतिद्वंदी से ज्यादा कुछ करते नहीं बना। एकमात्र लगन के साथ जुटे रहना ही वो रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक बिना किसी रोक टोक के पहुंचा देता है और जीवन सफल बन जाता।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन मीडियम वेब पर, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अन्तर्जालीय सुरक्षायाः च आरभ्य उदयमान प्रौद्योगिकी पर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदैः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगू के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के

हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच टेलीफोन पर बातचीत। रास लफान हादसे पर जताई संवेदना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अलनीनो के असर से निपटने के लिए सरकार कर रही अखंड तैयारियां। 315 जिले हो सकते हैं प्रभावित। और प्रदेश में 2-3 दिन में दाखिल होगा मॉनसून। आज 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के अमीर ने कल कतर के रास लफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख

0: बताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थाने की सराहना की। नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के समापन पर कल ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका अहम है और यह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर रहा है। दो दिवसीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा जैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्यस्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की मौजूदगी में इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और साइबर जागरूकता बुकलेट का विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री देशभर में जन जागरूकता के लिए साइबर जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए खरीफ फसल के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं। श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के पास अचारपुरा में 5 दिवसीय शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजाति संस्कृति के संरक्षण के साथ जनजाति समाज के विकास के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। डॉ. यादव ने कहा कि कई पीढ़ियां प्रभावित करने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, नियंत्रण और उपचार की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है।
1: सिकल सेल एनीमिया की ऐसी असाध्य बीमारी जिसके कारण से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में जो संकल्प लिया के सिकल सेल एनीमिया के न केवल स्क्रीनिंग कराएंगे लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को बीमार को पहचान करके उसकी दवाई, उसका इंतजाम और भावी इस प्रकार से जो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती उसको बचाने का काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जनजाति परंपरा, कला और शिल्प के इस अनूठे मध्य देश की सांस्कृतिक धारा से आज का ये शिल्पकार महोत्सव अपने आप में शोभायमान हो रहा
2: है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल कैबिनेट बैठक में बताया कि सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों को ऑनलाइन लिंक भेजकर सुझाव मांगे थे, जिनमें से 9 लाख लोगों ने अपनी राय दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक 90% से अधिक लोगों ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया है, जिनमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शामिल हैं। यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी 5 जुलाई तक ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने वर्ष 2025-26 बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश में कक्षा 5वीं का परिणाम 53.5

80%, कक्षा पांचवी का 57.70%, कक्षा दसवीं का 66.80% और कक्षा बारहवीं का 77.80% रहा है। कक्षा दसवीं में शासकीय आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय गार्गी भोपाल की छात्रा रौनक ने 90.50% अंक के साथ प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा बारहवीं में इसी विद्यालय की छात्रा सुजाता मीना ने 89.80% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। राज्य वित्त आयोग आज भोपाल संभाग के दौरे पर रहेगा और नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव लेगा। आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया सहित सदस्य वीआईपी सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे से सांसद विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। शिवपुरी जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की है। प्रशासन ने कल 8 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील कर दिया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर हुए निरीक्षण में कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र, फायर एनओसी और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। इसके अलावा नरसिंहपुर में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा और ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। ग्रुप बी में शामिल दोनों टीमों के अब तक 6-6 अंक हैं। हालांकि बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड टॉप पर है। दोनों टीमों ने अपने अपने सभी 3 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड ने श्रीलंका, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को हराया, जबकि वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड और श्रीलंका से जीत दर्ज की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में नारकोटिक्स और नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। आगरमालवा में पशुपालन और डेयरी विभाग की कार्यशाला में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। झाबुआ में जनजातीय कार्य विभाग और शिक्षा विभाग तथा जिला शिक्षा केन्द्र के छात्रावासों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी छात्रावासों में 100% प्रवेश करने संबंधी निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने शहरी क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर लगभग 50 स्कूल वाहनों की जांच की। नर्मदापुरम में गौवंश को लेकर विकासखंड स्तरीय मैत्री गौ सेवक सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। खंडवा में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर शहर में कोचिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की सघन जांच की जा रही है। कटनी में ढीमरखेड़ा विकासखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 के उन्मुखीकरण के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजगढ़ में जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं के 140 आवेदन का निराकरण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी महक, इसमें सुनिए मुकेश जैन से हिंदी काव्य पाठ।
1: मेरी पहली रचना का शीर्षक है हम उजियारा फैलाएं। जैसे सूरज खुद जल करके

अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक, इसमें आपने सुना मुकेश जैन से हिंदी काव्य पाठ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में अभी आपने राख और चिंगारी फिल्म का ये गीत सुना। आवाज थी उषा मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम, गुल्लू भाटिया व साथी की। गीत कुलवंत जानी का था और संगीत रतनदीप हेमराज का। अब लीजिए सुनिए अगला गीत है फिल्म मैंने जीना सीख लिया से। आवाज अमित कुमार की है, गीत अनवर सागर का और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: वासांसि जीर्णानि यथा विहाय।
1: अरे कब से तुम गीता पढ़ने लगे? क्या गीता ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हो रही है?
0: हाँ हाँ सही समझी, विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन की शाखा है हमारे ललितपुर में, वहीं से तैयारी कर रहा हूँ।
1: अच्छा, वो प्रगति विद्या मंदिर के पीछे नई बस्ती में जो स्वाध्याय मंडल है?
0: हाँ हाँ वही, उसके संचालक है श्री सर्वदेव तिवारी। मोबाइल नंबर है
1: 8858920259
0: 8858920259।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: किसे?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने ने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए हादसा फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गीत MG हशमत का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: मोहब्बत की खुशबू हवाओं में है।
1: मैं खुश हूँ कि तुम आज मेरी बाहों में हो।
0: मिलन की घड़ियाँ कितनी हसीन होती हैं, है ना?
1: हाँ।

0: डूबता सूरज भी कितना खूबसूरत लगता है।
1: हाँ, मगर इसके बाद अंधेरा छा जाएगा।
0: मैं वक्त के कदमों को रोक लूंगा।
1: वक्त वो तो हमें बहुत पीछे छोड़ गया।

फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए फिल्म जुगनू 1947 का ये गीत। आवाज मोहम्मद रफी और नूरजहां की है, संगीत फिरोज निजामी का है और गीत असद भोपाली का है।

फिल्म संगीत में आप लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म छोटी सी मुलाकात का ये गीत हसरत जयपुरी का है और संगीत शंकर जय किशन का।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

फिल्म छोटी सी मुलाकात के गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा

0: सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threat for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ

0: साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional response. Innovative, disruptive technologies

0: Legislation Act to boost the fundraising ability of religious bodies registered as NGOs and to bar religious conversion. BRICS national security advisors and heads call for joint action against terrorism, cyber threats, states the Tribune. An editorial in the Pioneer writes on how e-governance is transforming Grameen Bharat. With nearly 900 million people living in rural India, the effectiveness of our Panchayati Raj institutions will shape the trajectory of the nation's development as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US rework trade deal amid tariff changes as fresh talks begin after Modi-Trump G7 meet, notes the Asian Age. The Statesman reports about a record surge in Vaishno Devi pilgrims as the number crosses the 50 lakh mark well before the year reaches its halfway point. International Maritime Organization announces plan to evacuate vessels stuck in Persian Gulf due to the war in West Asia, writes the Hindu. And finally, The Economic Times writes about Gujarat government focusing on Ranshala to educate children of salt pan workers by converting unusable buses into classrooms equipped with smart TVs and TV connectivity dedicated to educational channels. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिए गजानन माधव मुक्तिबोध के संस्मरण हरिशंकर परसाई से।
3: तो जब वो ये कहते थे कि मैं फंतासी में सोचता ही हूँ
4: जी,
3: तो इसका मतलब ये है कि हर जीवन अनुभव से जो निष्कर्ष निकालते थे वो
4: जी
3: वैचारिक, उसको वो तत्काल प्रकृति के अनुसार फंतासी का रूप दे दिया करते थे
4: जी,
3: ऐसा मुझे मालूम होता है
4: जी।
3: और फिर फंतासी के द्वारा ही उस पर वो चिंतन भी करते थे, ये उनके साथ एक विशेष प्रकार की बात है। और जैसा आपने पूछा है कि जीवन से इसका संबंध क्या हो सकता है, तो जीवन में एक विशेषता तो ये थी कि उनके पिता पुलिस के अफसर थे और ही देशी रियासत के थे। देशी रियासतें जो है वो अत्याचार होता था उनमें, ये तो सही बात है। और राजसत्ता जो है उससे संपर्क जनता का पुलिस के माध्यम से ही होता था और पुलिस अत्याचारी होती थी और इनके अपने पिता जो है पुलिस के अफसर थे, घर में ही बैठे हुए, इसका प्रभाव भी उन पर पड़ा होगा, सोचते होंगे
4: जी।
3: कुछ किशोरावस्था में जब वो सोचने समझने लायक हो गए होंगे
4: जी,
3: ये सब इसका भी कुछ हो सकता है। और फिर वो यहाँ से वहाँ जगह से जगह जाते रहे, छोटी मोटी नौकरियां करते रहे, कहीं बेंगलोर में नौकरी की, बनारस में की उन्होंने, फिर जबलपुर में की, नागपुर में की, कई जगह की, तो एक यायावरी जीवन उनका ये सब चलता रहा
4: जी।
3: तो कुछ कारण ये भी हो सकता है उसका। मुझे ऐसा लगता है कि वो जितनी शक्तिपूर्वक अपनी बात कहना चाहते थे
4: जी,
3: उतनी शक्तिपूर्वक जो काव्य परिपाटी थी उस समय की,
4: जो प्रचलित
3: प्रचलित उस काव्य परिपाटी के अंदर उस बात को वो नहीं कह सकते थे
4: जी।
3: जैसे कि ब्रह्मराक्षस एक कविता है उनकी
4: जी,
3: और इसी नाम की एक कहानी भी है, ये

0: राक्षस क्या है कि परम ज्ञानी लेकिन परम अहंकारी व्यक्तिवादी, उसके ज्ञान का समाज को कोई लाभ नहीं। तो कविता में तो यह है कि वो बावड़ी में बैठा हुआ है, एक पुरानी बावड़ी में खंडर हो गई है बैठा है, और अपनी ही प्रतिध्वनि सुनता है और प्रसन्न होता है, और अपने शरीर का मैल बावड़ी के पानी से धोता है लेकिन वो धुलता नहीं है। सूरज की किरण कहीं से आती है तो समझता है कि सूर्य मेरे चरणों पर अपना मस्तक रख रहा है, और चांद की किरण आती है तो समझता है कि मेरे प्रति चांद श्रद्धा प्रकट कर रहा है
1: जी।
0: ऐसा एक व्यक्तित्व उसके अंदर परम ज्ञानी बैठा हुआ बावड़ी में वो
1: जी।
0: तो इस प्रकार का जो बुद्धिवादी होता था
1: जी,
0: उससे बहुत चिढ़ते थे वो। अब इस प्रकार के बुद्धिवादी का के चित्रण करने के लिए ये जो फैंटेसी उन्होंने बुनी है
1: जी,
0: इस प्रकार की
1: जी,
0: बावड़ी में बैठा हुआ वो
1: ब्रह्म राक्षस
0: अहंकार में प्रतिध्वनि अपनी ही सुनाई पड़ती है उसको सिर्फ, और ये लगता है कि सूर्य चंद्र वगैरह सब मेरी सेवा में लगे हैं, सब मेरे चरणों पर अपने सिर रखते हैं
1: जी।
0: ये अहंकार बुद्धिवादी का जो है
1: जी।
0: इसके बारे में तो वो मुझे तो आप देखिए कि वो फैंटेसी के द्वारा ही वो अभिव्यक्त कर सकते थे उसको। दूसरी फैंटेसी से उन्होंने इसी नाम की कहानी भी लिखी है, ब्रह्म राक्षस
1: का शिष्य।
0: हाँ,
1: शायद उस कहानी का शिष्य।
0: हाँ, और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ब्रह्म राक्षस में क्यों हो गया
1: जी।
0: पूर्व जन्म में मैं परम ज्ञानी था लेकिन मैंने उस ज्ञान का कोई लाभ समाज को नहीं दिया
1: जी,
0: इसलिए मैं शापित प्राणी हूँ
1: जी।
0: हाँ, मैं ब्रह्म राक्षस हो गया हूँ और अब मैं उस ज्ञान का प्रसार कर रहा हूँ ताकि पाप मुक्त हो जाऊं
1: जी,
0: ये वो कहता है। तो अब इसमें सेंटर आइडिया उनका निश्चित रूप से ये था कि ज्ञान जो है वो व्यक्तिगत अहम की तुष्टि के लिए नहीं है
1: जी,
0: वो समाज के लाभ के कल्याण के लिए, जो ये नहीं करता है वो ब्रह्म राक्षस हो जाएगा।
1: यानी दूसरे शब्दों में ज्ञान व्यक्तिगत संपदा नहीं है।
0: संपदा नहीं
1: जी। दादा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछ लूं कि मुक्तिबोध की रचनाओं में बार बार कुछ खास चीजें जैसे सांप, बिच्छू, भूतहा बंगला, ब्रह्म राक्षस की चर्चा तो आपने कर ही दी, खंडहर वगैरह, ये चीजें बार बार आती रहती हैं, इनके पीछे आखिर क्या बात थी?
0: हाँ। देखिए, जहां तक उस वातावरण का संबंध जिसमें वो रहे
1: जी,
0: तो अंतिम 6 वर्ष उनके जीवन के जो थे वो राजनांद गांव में कटे
1: जी,
0: और वहां रहते थे राजा के पुराने महल में
1: जी,
0: और उसके से बिल्कुल लगा हुआ पीछे एक तालाब था, और जिन जो उन्होंने वर्णन किया है, अवाबीरें आती हैं, उल्लू आते हैं, गुग्गू आते हैं
1: जी,
0: ये सब मैंने उनके घर में घुसते हुए देखे।
1: अच्छा जी।
0: बल्कि उल्लू की तारीफ करते थे कि इतना सुंदर होता है
1: जी,
0: कितना अच्छा होता है ये, सिर्फ यह है कि इसका जो ब्रेन है वो एक बबल होता है सिर्फ
1: जी,
0: इसलिए उल्लू कहलाता है। तो ये अबाबीना ये सब वहां आया करती थी
1: जी,
0: उनके उसमें, और ये इन सब को जैसे देख करके लोग इनसे घृणा करने लगते हैं, वो नहीं करते थे
1: जी,
0: वो सामान ही इसको मानते थे। मेरा ख्याल ये है कि एक टूटती हुई व्यवस्था को
1: जी,
0: जो कि डिजनरेट हो गई थी
1: जी,
0: उसके खंडहर उनको दिखने लगे थे
1: जी,
0: अपनी दृष्टि से पहले से, उस व्यवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए उनको इस प्रकार के प्रतीकों की आवश्यकता महसूस हुई होगी
1: जी,
0: ऐसा मुझे मालूम होता है
1: जी,
0: क्योंकि वर्तमान व्यवस्था से बेहद असंतुष्ट थे,
1: जिसके
0: प्रति क्रोध भी था उनको
1: जी,
0: तो लगता था कि जैसे कभी ये बनाया गया था स्ट्रक्चर, अब ये खंडहर हो गया है, और जो जीवन के सुखदायी कल्याणकारी मूल्य हैं उनका नाश हो चुका है।

0: जी
1: और अकल्याणकारी जो मूल्य हैं
0: जी
1: वो किसी एक वर्ग ने स्थापित कर दिए समाज में
0: जी
1: और उन्हीं को समाज ने स्वीकार भी कर लिया है
0: जी।
1: तो इस प्रकार का जो इनका चिंतन होगा उनके चिंतन में कोई बहुत अच्छा सुंदर ड्राइंग रूम वाला फ्लैट नहीं आएगा
0: जी,
1: वो खंडर ही आएगा
0: जी।
1: और उसमें कोई सुंदर तोता नहीं आएगा, उसमें घुग्गू ही आएगा, अबाबील ही आएगी, बिच्छू आएगा, सांप आएगा, बिच्छू सांप भी आए हुए
0: हैं,
1: गिरगिट भी आया हुआ है
0: जी।
1: यही आएगा। मेरा ख्याल ये है कि ये उनकी उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें वो एक पूरी सभ्यता को ढहते हुए देख रहे थे
0: जी।
1: और गलत जीवन मूल्यों की स्थापना हो रही थी जिनके प्रतीक उन्होंने इन सबको मान लिया था
0: जी। दादा, उनकी रचनाओं में खासकर जिनमें कथा तत्व है उनके अधिकांश चरित्र बहुत डरे हुए, बहुत व्यग्र, बल्कि मनोवैज्ञानिक विकृति की हद तक वे डरे हुए दिखते हैं। क्लॉड रिथरली से लेकर अंधेरे में कविता तक के चरित्रों को आप देख लें, इसके पीछे क्या बात थी, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे?
1: तो जिनके उनके जो पात्र हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं
0: जी
1: कि वो सब जीवित पात्र हैं
0: जी,
1: जिनको मैं भी जानता हूं।
0: अच्छा।
1: जैसे उनका जो विपात्र उपन्यास है
0: जी,
1: वो सारे पात्र राजनांद गांव के हैं।
0: अच्छा।
1: कॉलेज के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन भी हैं
0: जी,
1: और उनके मित्र भी हैं।
0: अच्छा।
1: वो बिल्कुल ही वास्तविक हैं
0: जी।
1: दूसरी बात आपने जो कही कि उनके पात्र इस प्रकार के होते हैं
0: जी,
1: तो एक तो इसका एक सब्जेक्टिव रीजन भी है
0: जी
1: कि स्वयं मुक्तिबोध हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करते थे
0: जी,
1: और एक प्रकार की आशंका से भी हमेशा ग्रस्त रहते थे
0: जी,
1: पूरी तरह से। ये नहीं कि विक्षिप्त थे वो
0: जी,
1: उस प्रकार नहीं, लेकिन वो एक खास तरह का उनके उनके भीतर अविश्वास
0: जी,
1: असुरक्षा की भावना
0: जी,
1: और कुछ कुछ एबनॉर्मेलिटी
0: जी
1: इस प्रकार की उनके अंदर दिखती थी
0: जी,
1: और ये उनके जीवन संघर्षों के कारण
0: जी
1: ऐसा हुआ हो, किशोरावस्था से जो उनकी वो थी। जैसे कि उन्होंने दाहिने जेब में चाबी रखी है
0: जी,
1: ये उनको ध्यान है
0: जी,
1: और जब घर आए और जहां जेब में हाथ डाला चाबी नहीं मिली
0: जी,
1: तो घबरा जाते थे
0: जी।
1: ये सही घटना है,
0: इस बात की चर्चा आपने संस्मरण में की है
1: जी। मैंने कहा कि बाएं में होगी, तो बाएं में थी वो।
0: अच्छा।
1: और मैंने खोल लिया उसको लेकर के
0: जी,
1: तो इस छोटी सी बात जो है कि वो जहाँ चीज मैंने रखी थी वहाँ नहीं है, इससे आशंकित हो जाते थे कोई षड्यंत्र है क्या ये
0: जी,
1: मेरे खिलाफ क्या बात है, कैसा हो गया ये
0: जी,
1: कि यहाँ की चाबी यहाँ नहीं मिल रही है। तो इसका कारण यह है कि उनके जीवन के अनुभव इस प्रकार के थे, उन पर तरह तरह के आघात भी हुए उनके विचारों के कारण
0: जी।
1: जैसे उनकी पुस्तक को लेकर के जो कांड हुआ था
0: जी,
1: इतिहास वाली पुस्तक को लेकर के
0: जी,
1: वो तो भयंकर कांड था
0: जी,
1: तो शारीरिक रूप से भी क्षति पहुंचाने के लिए उनका योजना बन चुकी थी उन लोगों
0: जी,
1: किसी कारण से बच गई वही बात अलग है
0: जी,
1: लेकिन नारे लिखा गए थे सारे शहर की दीवारों पर इनके खिलाफ
0: जी,
1: और जुलूस निकल चुका था, किताबों की होली जला दी गई थी
0: जी,
1: और इनको धमकी दे दी गई थी कि आपको मारेंगे
0: जी,
1: ये सब था उसमें
0: जी।
1: तो इस सब का असर भी उनके मानसिकता पर
0: जी
1: पड़ा।
0: अंधेरे में कविता की पृष्ठभूमि भी क्या ही थी?
1: हाँ, मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चित मत है ये
0: जी,
1: क्योंकि उन दोनों में वो क्योंकि केस चल रहा था हाई कोर्ट में उस पुस्तक को ही लेकर के
0: जी,
1: तो अक्सर वो जबलपुर आते थे
0: जी,
1: मैं वहाँ जाता था, हम लोग भोपाल जाते थे सरकार से मिलने के लिए। तो उन्होंने उन शक्तियों को तब पहचान दिया था
0: जी।

0: जो शक्तियाँ की फासिज्म की हद तक पहुंच चुकी थी।
1: जी दादा, कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें वे लोग भी शामिल थे इस षड्यंत्र में जिन्हें वे अपना मित्र मानते थे, इस कारण भी उनका आघात बहुत गहरा था।
0: तो ये तो मैं नहीं जानता
1: जी
0: कि उनके मित्र मानते थे वो शामिल थे इसमें।
1: जी
0: इसकी मुझे जानकारी है नहीं।
1: जी
0: सही बात यह है, इतना मैं जानता हूँ कि एक राजनीतिक दल
1: जी
0: जिसका कि एक अर्ध फौजी संगठन है
1: जी,
0: वो और प्रकाशक यहाँ के इन लोगों ने मिल करके
1: जी,
0: तो उसमें व्यवसाय और राजनीति दोनों मिला करके थे
1: जी,
0: उन लोगों ने सारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का आंदोलन चलाया था
1: जी।
0: जो बात उसमें उन्होंने लिखी थी, मुक्तिबोध इतिहासकार नहीं थे
1: जी,
0: इतिहास लेखक थे
1: जी,
0: कोई मौलिक उन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा है, कई पुस्तकों का अध्ययन करके उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी। और जो बातें जो उसमें मानी गई थी काबिले एतराज, वो शासन ने स्वयं प्रकाशित की थी अपनी पुस्तकों में
1: जी।
0: पर ये एक तो संगठन
1: जी
0: जो कि अर्ध सैनिक संगठन
1: जी
0: फासिस्ट
1: जी,
0: और ये प्रकाश करने में दे किया, तो उन्होंने वो उनको उसका रूप देखा
1: जी
0: और भोगा
1: जी।
0: तो वो महीने उनके जो हैं कुछ बहुत ही बेहद कष्ट और गिरावट में गुजरे वो
1: जी।
0: तो उन्होंने इसको फिर बहुत व्यापक रूप में देखा कि ये कितना बड़ा संकट है ये, और जो उन्होंने उस परिणाम आपने देखा होगा कि दिन में देखते हैं कि दुकान पर बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं, स्कूल में अध्यापक हैं और क्लर्क हैं
1: जी,
0: बड़े बड़े आदमी लगते हैं, लेकिन रात को क्या करते हैं ये अंधकार में
1: जी,
0: बंदूक लिए हुए हैं, छुरा लिए हुए हैं, ये लिए हुए वो लिए हुए हैं, तो ये सब उस कविता के पीछे है उनका अनुभव
1: जी। दादा, वो बीमारी के दिनों में मुक्तिबोध जी किस तरह सोचते थे जीवन को लेकर या मृत्यु को लेकर, आप चूंकि उनके बहुत करीब थे उन दिनों, आप कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं दिल्ली में था, वहाँ खबर मिली उनकी चिट्ठी मोती श्रीकांत वर्मा के पास
1: जी,
0: यहाँ भी लिखा होगा जबलपुर भी
1: जी,
0: श्रीकांत की पहुंची, उससे मालूम हुआ कि उनको लकवा एक तरफ लग गया है
1: जी।
0: तो मैं तुरंत वहाँ से भोपाल आ गया, यहाँ मुख्यमंत्री से बात की
1: जी,
0: कृषि मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराने का तय हो गया
1: जी।
0: फिर राजनांद गया, गया मैं उनको वहाँ से लेकर के भोपाल आ गया
1: जी।
0: हो ही गया था उस स्टेज में, उस स्टेज में भी वो मुझे देख कर आया हुआ हूँ, बहुत खुश हुए
1: जी।
0: प्रमोद वर्मा आ गए, वहाँ पास ही रायगढ़ में थे
1: जी,
0: अत्यंत प्रसन्न, बीमारी को बिल्कुल भूल गए थे वो
1: जी।
0: और हो ये गया था कि उस पीरियड में उसमें बीमारी में जो उनको वो हुआ उसके बाद से उन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया था
1: जी,
0: अपनों को पूरी तरह से अपने मित्रों के हाथ में उन्होंने सौंप दिया था
1: जी।
0: भोपाल चलना है आपको यहाँ से, मैं उनसे कहा, उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया
1: जी,
0: ये भी नहीं कहा कि रायपुर पास है मेडिकल कॉलेज
1: जी,
0: यहाँ क्यों न जाए, नहीं, आप भोपाल कह रहे हैं भोपाल चलिए
1: जी,
0: भोपाल में जो कहते थे वो मान लेते थे
1: जी।
0: तो वो स्वयं निर्णय भी लेना उन्होंने बंद कर दिया था।
1: अच्छा,
0: यह है कि वो गुमसुम रहा करते थे और सोचते रहते थे
1: जी।
0: अब वो क्या सोचते थे, क्योंकि उनकी जबान भी लड़खड़ाने लगी थी
1: जी,
0: साफ बोल नहीं पाते
1: जी,
0: गुमसुम रहते थे और अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं करते थे, सिवाय इसके कि सिगरेट मांगते थे
1: जी,
0: जिसकी आदत थी उनको, और नहीं तो जो जिसको जो करना है उनके साथ
1: जी,
0: वो मित्र लोग करें परिवार करें, ऐसा हो गया था।
1: क्या इस चीज का आपको कुछ एहसास था उस वक्त उनके नजदीक रहते हुए कि बीमारी से ये चंगे हो जाएंगे, इसको लेकर कोई आशावादी बात उनके दिमाग में है?
0: हाँ, उनके दिमाग में राजनांदगांव में
1: जी
0: ये बात थी
1: जी
0: कि ये हो जाएगा, लेकिन ये इतना वो जानते थे कि

0: लकवा जो है वो ऐसी बीमारी है, अंग तो कमजोर पड़ ही जाएंगे
1: जी।
0: बाया तरफ लगा था तो इस हाथ से लिख तो सकते थे वो
1: जी,
0: कोई बात नहीं थी, लेकिन एक तटस्थ भाव उनके भीतर आ गया था।
1: अच्छा अच्छा।
0: भोपाल में उनको मेरा ख्याल है कि क्योंकि बोलते नहीं थे वो
1: जी,
0: और सोचते ही ज्यादा थे
1: जी,
0: तो एक बार कुछ उन्होंने कहा उत्तेजना में क्या हुआ रात को कि उनका मुंह जो है वो यूं टेढ़ा हो गया
1: जी।
0: जैसे उनकी पुस्तक का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है
1: जी,
0: एक तो ही उनका मुंह टेढ़ा हो गया
1: जी।
0: रात को करीब 12 बजे की बात
1: जी,
0: तब डॉक्टर को हम लोगों ने बुलाया घर से उनके
1: जी,
0: फिर उपचार हुआ उनका
1: जी,
0: फिर वो यथास्थान उनका मुंह जो है
1: अच्छा अच्छा
0: वो ठीक किया गया। लेकिन आंतरिक संघर्ष उनमें बिगड़ता इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक तटस्थ भाव ही उनके अंदर आ गया था
1: जी।
0: और डॉक्टरों से वो बहस भी करते थे
1: जी,
0: मजे की बात यह है तो डॉक्टर लोग से कहते थे कि साहब इनका बहुत चक्करदार दिमाग है
1: जी।
0: मैं कहा है वो तो चक्करदार दिमाग, इसमें कोई शक नहीं, वो मेडिकल साइंस को लेकर के ही उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में
1: जी,
0: विश्वसनीयता के बारे में बात करने लगते थे
1: जी,
0: क्योंकि विज्ञान के अंधविश्वास नहीं होते हैं क्या
1: जी,
0: इस तरह की बातें डॉक्टरों से करते थे
1: जी,
0: और बहस करते रहते थे इनको लेकर के, सोचना उनका मन नहीं हुआ था
1: जी।
0: लेकिन एक स्टेज मुझे लगता है कि वही मान चुके थे कि ये बीमारी अच्छी होगी नहीं।
1: अच्छा, इसका एहसास आपको था कि वैसे
0: मुझे तो मालूम था, मुझे तो जब डायग्नोसिस हुआ उनका वहां पर
1: जी,
0: तो मुझे तो ये समझ में आ गया था
1: जी
0: कि अच्छे नहीं होंगे ये।
1: अच्छा दादा, एक प्रश्न और मैं करूं, साक्षात्कार में श्रीमती शांता मुक्तिबोध का एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि वे शिव की पूजा करते थे और कुछ घरेलू कर्म कांडों में विश्वास करते थे, यानी एक औसत आस्तिक आदमी जिस तरह से पूजा पाठ में विश्वास करता है वो भी करते थे, इसको लेकर बड़ा वो बवाल खड़ा हुआ था साहित्य क्षेत्र में, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, एक तो मैं उनके घर में
1: जी
0: ठहरा नहीं जिसमें उनकी दिनचर्या देख सकूं
1: जी,
0: लेकिन जो बातचीत होती थी
1: जी
0: उसमें तो कहीं वो आस्तिक नहीं लगते थे
1: जी,
0: नहीं कभी इस बात की चर्चा भी नहीं करते थे, वो भी नहीं करते थे, और वो निरीश्वरवादी ही थे
1: जी,
0: ये हम लोगों का विश्वास था, अभी भी है
1: जी।
0: लेकिन इसको इतनी सहजता से भी नहीं लाना चाहिए
1: जी,
0: क्या होता है कि एक संस्कार बहुत पुराने और बहुत जमे हुए होते हैं
1: जी
0: मनुष्य के उसमें चेतना में
1: जी,
0: जो एकदम से छूटते नहीं है
1: जी,
0: और जो आस्तिकता या नास्तिकता ना होकर के कर्मकांड रह जाते हैं सिर्फ
1: जी।
0: मैंने ऐसे एक मित्र को देखा है जो कट्टर मार्क्सवादी
1: जी,
0: और मेरे साथ, लेकिन जब वो निकलते थे और सड़क के किनारे एक शंकर का मंदिर जो ही आता था
1: जी,
0: तो निष्प्रयास उनके मुंह से निकल पड़ता था जय शंकर।
1: अच्छा,
0: उनका विश्वास नहीं था
1: जी,
0: लेकिन ये रिफ्लेक्स था एक तरह से
1: जी,
0: क्या था उनका रिफ्लेक्स था
1: जी,
0: कि मंदिर को देखते ही जय शंकर निकल पड़ता था
1: जी,
0: ये रिफ्लेक्स था, निरीश्वरवादी थे वो
1: जी।
0: इसके बावजूद तो इस तरह से अगर श्रीमती मुक्तिबोध कहती हैं तो ये बात विश्वसनीय है
1: जी,
0: ऐसा करते होंगे वो
1: जी,
0: हो सकता है एक कर्मकांड के रूप में, या ये कि उनसे छूट नहीं रही थी एक परिवार की परंपरा
1: जी,
0: इस कारण से करते होंगे, लेकिन बातचीत में और उनके लेखन में कहीं इस प्रकार की कोई अंधविश्वास है नहीं
1: जी,
0: ऐसा मुझे मालूम होता है। दूसरी बात यह है कि इसको बहुत कट्टरतापूर्वक लेना भी नहीं चाहिए
1: जी,
0: मैं अपने अनुभव बताता हूँ कि मेरा ख्याल है कि 75% मार्क्सवादी जो है वो तो बाप के मन में पिंडदान करते हैं
1: जी।
0: तो किसको क्या किया जाएगा
1: जी,
0: कहते क्या है कि परिवार का दबाव है, परिवार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते इसलिए करते हैं, लेकिन करते जरूर है वो, उन्हें विश्वास नहीं है उनका
1: जी,
0: फिर भी करते हैं, ये शायद इस कारण करते हो कि एक सहज रिफ्लेक्स हो इनका
1: जी
0: जो परिवार में चला आ

0: रहा है तो ये भी उसको पढ़ लिया करते होंगे कि स्तोत्र कुछ इस तरह का होता था
1: जी। अच्छा दादा, मुक्तिबोध जी के संबंध में बहुत मूल्यवान संस्मरण आपने सुना है, और ये संस्मरण ही न थे बल्कि उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही मौलिक विश्लेषण भी था, जिसमें बहुत सारे नए तथ्य सामने आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से। इसमें आपने सुना गजानन माधव मुक्तिबोध के संस्मरण हरिशंकर परसाई से। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हमारे कलाकार हैं अरविंद कुमार कुशवाहा। झीका पर इनके साथ हैं प्रेम कुमार सोनी, बेंजो पर हैं जब्बार खान और ढोलक पर हैं अशोक विश्वकर्मा। आइए इनसे सुनते हैं दादरा।

लोक रंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए झूला गीत अरविंद्र कुमार कुशवाहा की आवाज में।

अब लीजिए सुनिए अरविंद्र कुमार कुशवाहा की आवाज में विदाई गीत। इनके साथ झीका पर हैं प्रेम कुमार सोनी, बैंजो पर जब्बार खान और ढोलक पर हैं अशोक विश्वकर्मा। तो आइए सुनते हैं विदाई गीत।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: लोकरंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कहरवा।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: लोकरंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ढिमरियाई, अरविंद कुमार कुशवाहा की आवाज में।

अभी आपने ये ढमरियाई सुनी, इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। इसमें अभी आपने अरविंद कुमार कुशवाहा के स्वर में ये लोकगीत सुने। इनके साथ झीकपर थे प्रेम कुमार सोनी, बेंजो

पर जब्बार खान और ढोलक पर अशोक विश्वकर्मा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विवाह फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। श्रोताओं, सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित 2006 की फिल्म विवाह भारतीय सिनेमा की उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जिसने अपनी सादगी और पारिवारिक मूल्यों के दम पर दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। यह फिल्म इस बात का सशक्त प्रमाण है कि बिना किसी तामझाम या व्यावसायिक शोर शराबे के भी एक साधारण सी कहानी को कितनी खूबसूरती और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा जा सकता है। फिल्म की पूरी पटकथा प्रेम और पूनम के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पूनम एक अनाथ लड़की है जो अपने चाचा चाची के साथ रहती है और प्रेम एक संपन्न तथा संस्कारी परिवार का बेटा है। फिल्म की शुरुआत एक पारंपरिक विवाह प्रस्ताव से होती है जो धीरे धीरे एक अटूट विश्वास और समर्पण की कहानी में बदल जाती है।

आइए सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह का ये गीत। श्रोताओं, फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक मोड़ तब आता है जब शादी से ठीक पहले एक भीषण आग की दुर्घटना में पूनम गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इस संकटपूर्ण समय में जब समाज अक्सर दिखावे और शारीरिक सुंदरता को प्राथमिकता देता है, प्रेम का किरदार एक मिसाल कायम करता है। वह बिना किसी संकोच के पूरी निष्ठा के साथ पूनम का साथ निभाने का फैसला करता है, भले ही वह शारीरिक रूप से अक्षम हो गई हो। यही वह बिंदु है जहां फिल्म यह संदेश देती है कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह सहारा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी ढाल बनकर खड़ा रहता है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। इसमें आप सुन रहे हैं विवाह फिल्म के कुछ गीत। अब लीजिए सुनिए सुरेश वाडकर और कुमार सानू की आवाज में ये गीत। श्रोताओं, आपको बता दें, शाहिद कपूर और अमृता राव ने इस फिल्म में अपनी भूमिकाओं को अत्यंत सहजता से निभाया है। शाहिद कपूर ने एक ऐसे आदर्श प्रेमी की छवि पेश की जिसे आज भी भारतीय दर्शक बेहद पसंद करते हैं। अमृता राव की सादगी और उनके चेहरे के भावों ने पूनम के किरदार को जीवंत कर दिया। इसके अलावा अनुपम खेर और आलोक नाथ जैसे अनुभवी कलाकारों ने अपने अभिनय से फिल्म की भावनात्मक गहराई को और भी पुख्ता किया। रविन्द्र जैन द्वारा रचित इसका संगीत फिल्म की आत्मा है, जिसके बोल और धुन आज भी लोगों की यादों में ताजा है। मुझे हक है और मिलन अभी आधा अधूरा है जैसे गाने न केवल मधुर हैं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में अब लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल और पामेला जैन की आवाज में फिल्म विवाह का

गीत आपको बता दें, फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प रोचक तथ्य यह है कि यह फिल्म साल 2006 की सबसे बड़ी स्लीपर हिट साबित हुई थी। बजट के मामले में फिल्म काफी कम लागत की बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने उम्मीद से कहीं अधिक कमाई की थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म के संगीतकार रविंद्र जैन ने इसके गानों की रचना इतनी सादगी से की थी कि वे आज भी किसी भी शादी समारोह का अनिवार्य हिस्सा बन जाते हैं। शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर ने अपने किरदार को निभाने के लिए बेहद संयमित बॉडी लैंग्वेज का उपयोग किया था, जो उस समय के अन्य युवा अभिनेताओं से बिल्कुल अलग था। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई थी, जिससे इसे एक वास्तविक घरेलू परिवेश मिला। एक और खास बात यह है कि इस फिल्म ने अमृता राव के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उन्हें लड़कियों के लिए आदर्श के रूप में पहचान दिलाई।

आइए अब सुनते हैं सुदेश भोसले और रविंद्र जैन की आवाज में फिल्म विवाह का ये गीत। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विवाह एक ऐसी फिल्म है जो मध्यम वर्गीय परिवारों के उन मूल्यों को दर्शाती है जहां विवाह दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। फिल्म ने यह भी साबित किया कि सच्ची खूबसूरती बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र, संस्कारों और धैर्य में होती है। आज के दौर में जब सिनेमा अक्सर बहुत अधिक व्यावसायिक और तकनीकी जटिलताओं में उलझ गया है, विवाह की सादगी हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की याद दिलाती है। यह फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का एक ऐसा दस्तावेज है जो दिखाती है कि कैसे प्यार, विश्वास और धैर्य मिलकर एक जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि इतने वर्षों बाद भी यह फिल्म टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बार बार देखी जाती है और हर बार दर्शकों को उतनी ही आत्मीयता से जोड़ती है।

इसी गीत के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। इसमें आपने विवाह फिल्म के कुछ गीत सुने। मीडियम वेव 400 यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

अब समाप्त हुआ। इसमें आपने विवाह फिल्म के कुछ गीत सुने। मीडियम वेव 400 यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। शिवपुरी जिले में इस समय लोगों को मानसून का इंतजार है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि सोयाबीन, मूंगफली और उड़द जैसी फसलों की बोनी शुरू की जा सके। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने खाद वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाया है। खरीफ सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए जिले के डबल लॉक खाद भंडारण केंद्र अब शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। इससे किसानों को समय पर यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे और बोनी का काम प्रभावित नहीं होगा। जिले में अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत भूखंडों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला स्तरीय कॉलोनी सेल का गठन किया गया है। ये सेल कॉलोनाइजर लाइसेंस, कॉलोनी विकास की अनुमति और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम करेगी ताकि शहरों का विकास व्यवस्थित तरीके से हो सके। इस नई व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर को सौंपी गई है। सेल में राजस्व, नगरीय निकाय, पीएचई, बिजली वितरण कंपनी और पंजीयन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसी बीच जिला मुख्यालय पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जन परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर ने यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से मिले सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जन कल्याण की दिशा में खनियाधाना में आयोजित 3 दिवसीय शिविर भी चर्चा में रहा। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 12,599 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण करते हुए लोगों को राहत प्रदान की गई। साथ ही आमजन को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। शिवपुरी के माधोराव सिंधिया जिला खेल परिसर में प्रदेश का पहला जिला स्तरीय फिट इंडिया क्लब शुरू किया गया है। यहां आधुनिक जिम, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक्स, न्यूट्रिशन सपोर्ट जैसी सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मॉनसून की तैयारियों के बीच पोहरी में संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन आपदाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को जर्जर भवनों में शैक्षणिक गतिविधियां न चलाने और नदी नालों तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले के उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक में एमएसएमई उद्योगों के विस्तार और उद्योगों को आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि उद्योगों के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवासीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने लंबित आवासों को जल्द पूरा करने वाली सभी किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। सामाजिक सरोकारों की बात करें तो जिले में 35वीं एनसीसी बटालियन के शिविर में सीनियर कैडेट्स ने रक्तदान किया। इस दौरान कुल 15 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। दूसरी ओर मंगलम परिसर में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर में 215 दिव्यांगजनों को जांच के बाद कृत्रिम हाथ, पैर और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आईटीआई केंद्र में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया और 136 युवाओं ने पंजीयन कराया। इनमें से 96 युवाओं का चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पीएम जनवन और धरती आभा अभियान के तहत विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खोड़ में जन चौपाल लगाई। उन्होंने बिजली, राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, पेंशन और खाद्यान्न से जुड़ी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्य

0: कार्रवाई के निर्देश दिए। और आखिर में बात योग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिवपुरी जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिला मुख्यालय के पोलो ग्राउंड सहित विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का भाग 11।
3: श्रोताओं, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज सक्सेना और बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। सर, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका।
4: नमस्कार
3: सर। छोटे छोटे सवाल है जो पिछले बार भी मैंने आपसे पूछे थे। एक सवाल यह है कि प्री डायबिटीज होती क्या है ये?
4: देखिए, प्री डायबिटीज वो अवस्था है जहाँ पे खाली पेट शुगर आपकी 126 के अंदर रहती है, भरे पेट शुगर आपकी 200 के अंदर रहती है, पर जो ऊपर होने का दायरा होता है खाली पेट शुगर का वो 100 से 110 के ऊपर होती है और 126 के अंदर होती है, तो इसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। और भोजन के बाद 140 के ऊपर होती है और 199 के अंदर होती है तो हम इसको डायबिटीज नहीं कहते, इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। HbA1c की जांच आपको सबको मालूम है कि 6.5 और ऊपर हो तो हम डायबिटीज कहते हैं, पर ये 5.7 से 6.4 के बीच की अवस्था होती है, तो ये जो अवस्था है इसको प्री डायबिटीज कहते हैं, जहाँ पे हम इलाज नहीं करते। पर ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ शोध कहते हैं कि शुरुआती दौर का इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ऊपर की तरफ होता है, जिससे धमनियों में रुकावट, धमनियों में एथरोस्क्लेरोसिस, धमनियों की थिकनेस, कैरोटिड इंटीमा मीडिया थिकनेस, जो एक पैमाना है हार्ट डिजीज का, लकवे का, वो बढ़ने लगता है।
3: अब सर, किसी व्यक्ति की स्थिति प्री डायबिटिक है तो उसे डायबिटिक होने में कितना समय लग सकता है?
4: देखिए, तो निर्भर करता है कि आप जागृत अवस्था में हैं कि सुप्त अवस्था में है। जागृत अवस्था में होने पर आप इस अवस्था को सालों साल डायबिटीज में परिवर्तित होने से रोक सकते हैं, तो ऐसा जगाने वाला काम हम लोग करते हैं। तो अगर आप जागृत अवस्था में आते हैं जिसमें आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से नहीं लेते, तो हो सकता है कि सालों साल आपको डायबिटीज ना हो। इसके विपरीत आपको अगर कोई और बीमारी हो गई, आपको भर्ती होना पड़ा, प्रोलॉन्ग्ड एडमिशन हो गया, ऑपरेशन हो गया, गर्भावस्था आ गई, तो उन परिस्थितियों में हो सकता है कि हमें अपनी शक्तियों का बोध नहीं होगा और डायबिटीज हो जाएगी।
3: सर, ये भर्ती होने वाली बात से बहुत सवाल सबके मन में होता है कि जब कोई स्वस्थ व्यक्ति है, थोड़ी बहुत कोई बीमारी अचानक आई है या कोई दुर्घटना घट गई, उसको जब ICU में भर्ती किया जाता है तो उसकी डायबिटीज बहुत ऊपर दिखती है, तो वो डायबिटिक नहीं था, फिर डायबिटीज क्यों बढ़ गई ऊपर?
4: देखिए, आपका जब आप भर्ती होते हैं, बीमार होते हैं, तो बीमारी के कारण भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं, जो आपके ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, साइटोकाइन्स होते हैं, जो कि ये सूजन वाली अवस्था में आपके ऊतकों से निकलते हैं, ये भी बढ़ जाते हैं। इन सब का जो गुण होता है वो शुगर बढ़ाने वाला गुण होता है, तो उसको स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो प्रायः ऐसे लोगों में जिनको डायबिटीज नहीं है और स्ट्रेस की अवस्था है, दिल का दौरा पड़ गया है, लकवा लग गया है, तो शुगर इनकी बढ़कर 140 के आसपास आ जाती है।
3: तो फिर ये अस्थायी रूप से बढ़ती है ना?
4: हाँ, ये अस्थायी है, पर हाँ, अगर आप में प्री डायबिटिक स्टेटस है और अस्थायी रूप से बढ़ गई शुगर, हो सकता है बाद में स्थायी हो जाए।
3: सर, एक सवाल और भी है, जिनको हिस्ट्री में डायबिटीज है तो क्या उन्हें होगी ही डायबिटीज? कितनी संभावना है?
4: देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो परिवार में आपकी जो परंपराएं हैं, आहार व्यवहार है, आचरण है, वो चलता है, वो दादा से पोते को मिलता है, पोते से उसके बच्चों को मिलता है, तो जो खाने के प्रति स्वीकृति है और कि हम खाते पीते घर के लोग हैं, कम से कम चार रोटी खानी ही चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिमाग में घर कर जाती है।

0: जो खाने पीने का तरीका है, जो उत्सवों में व्यवहार करने का तरीका है, और रोजमर्रा में भोजन के अतिरिक्त जो भोजन लेने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। तो उस कारण भी प्रायः जब दादा को डायबिटीज है तो वो आदतें बच्चे में भी रहती हैं, उसको भी डायबिटीज होती है। पर हाँ, जेनेटिक ग्राउंड से ज्यादा एपिजेनेटिक्स बोलूंगा कि हाँ, कुछ परिवारों में जीन्स में कहीं ना कहीं ऐसी ये होती है टेंडेंसी कि उनको डायबिटीज हो सकती है। पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका आचरण है, आपका व्यवहार है, जो आपको आपके परिवार से मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपको उस भंवर की तरफ लेकर जाता है।
1: श्रोताओं, ऐसे और भी सवाल आपके मन में होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम सर से जरूर बात करेंगे। हमारा नंबर है 8878112343। नंबर फिर से सुन लीजिए 8878112343। अब हम मिलते हैं आपसे अगले बुधवार। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। दीजिए मुझे आज्ञा, स्वीकार कीजिए। मनु सक्सेना का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का भाग 11। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सामुदायिक गान के प्रशिक्षण पाठ में, सुनिए कन्नड़ भाषा का प्रशिक्षण पाठ।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहवु हारू तिहवु
1: हाडू तिहवु हारू तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला
0: जी
1: की दानी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुआ नाका
1: बान लोक नगुआ नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे
0: हसीव
1: मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते
1: हाँ।
0: हैं
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ। हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: हाँ। को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ? हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: तकी तकी तकी तकी तकी।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहले अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसी है। अच्छा तो गाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान के प्रशिक्षण पाठ। इसमें आपने सुना कन्नड़ भाषा का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार थी बीआर गीता। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त दर्शना गोस्वामी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म मिली से। आवाज लता मंगेशकर और साथी की है। गीत योगेश का और संगीत एसडी वर्मन का है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, मासूम धर्मी, वीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश बंटे, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमती, ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। बिलसराया से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम गोल्डी, दीप्ति अनुज और ओमजी चक्रवर्ती। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना मध्य प्रदेश से कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू कृष्णा, शिवा वर्षा, पूनम बाई और मोहिनी कुशवाहा। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म मिली का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म वक्त से। आवाज आशा भोसले और महेंद्र कपूर की है, गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत रवि का है। फरमाइश करता है आप सब, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज मधु राजावत, शशिकांत, रिया, रीत, स्वीटी, रितिका, रिचा, चित्रंजन, उमेश, कमल, सरोज, रेखा, आरती, ऋषभ राजावत एवं समस्त परिवार। ग्राम पोस्ट गुड़ा पाली से श्रीकांत विश्वकर्मा, सुमित, अमित श्रेष्ठी और विनीता विश्वकर्मा। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। बोरखेड़ा विप्रमल जिला उज्जैन से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूरत। ग्राम मामना जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से सोहन सिंह राजपूत। गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र नामदेव, धांसू नामदेव, छोटू नामदेव, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता नामदेव एवं समस्त नामदेव परिवार।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म दिल ने फिर याद किया से। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत जीएल रावल का और संगीत सोनिक उमी का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। आकाशवाणी ग्राम कनाय और करतल पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश से सत्य प्रकाश अहिरवार ठाकुर दीन माता दीन रामहित ओम प्रकाश राम रतन लाला भैया रविशंकर लेखराम शिव कुमार लव किशोर राजकुमारी किरण बबली ज्योति प्रभा पूजा दीपा सुशीला अर्चना रचना नैना मीरा नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा।

नराना मोनिका, नूपुर ऋषिका और राबुन, ग्राम ममना सरीला, जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, नीमच मध्य प्रदेश से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, यशस्वी पाटीदार, ग्राम दुर्गापुर पोस्ट बडेरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी से मानसिंह आदिवासी, मीना आदिवासी, बिटिया वैष्णवी, मोहनी और सत्येंद्र कुमार आदिवासी।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म तपस्या से। आवाज आरती मुखर्जी और किशोर कुमार की है, गीत एमजी हशमत का और संगीत रविंद्र जैन का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं सर्वानिया महाराज जिला नीमच से, गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार, यशस्वी पाटीदार, हंसवी पाटीदार। गायत्री मोहल्ला पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से, शिव नारायण पांचाल, देवनारायण, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, पवन, गुड्डी, अनुज और अंकुश। श्री अमरनाथ रेडियो श्रोता संघ ग्राम मवैया पोस्ट इमलिया जिला छतरपुर से, देवेंद्र कुमार राजपूत, राजेंद्र कुमार राजपूत, प्रतीक्षा गीता

और इनके मम्मी पापा। आदर्श रेडियो श्रोता संघ ग्राम मिर्तला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से रामजीवन राजपूत, राममिलन राजपूत, रामाश्रय राजपूत, भूरा राजपूत, सूर्यांश राजपूत, ऋषिकांत राजपूत और राजपूत परिवार।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म लफंगे से। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। हमारे श्रोता हैं गायत्री मोहाल पनवाड़ी जिला महोबा से, शिव नारायण पांचाल, देवनारायण, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, पवन, अनुज, गुड्डी और अंकुश। ग्राम पोस्ट भरवारा, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा से भगवान दास राजपूत, निहांश सिंह राजपूत, शिवा

कपिल, गजेंद्र, पुष्पेंद्र और आशीष राजपूत। ग्राम मंजगवा कला, पोस्ट अमरोनिया, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर से लखनलाल यादव, नेहा यादव, अनन्या, अनुष्का और अभिमन्यु यादव। ग्राम पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, यागिता पाल ने और निवेदिता पाल। ग्राम खड़ीचरा, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से आज्ञाराम, कल्याण शंकर, रवि, सुदामा, हरिओम, सचिन, सौरभ, शोभ, श्रेयांश, रागिनी, रिद्धि, शांति, संगीता, हरकुंवर एवं समस्त रजक परिवार। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म लफंगे का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगले कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मध्य प्रदेश का प्रसारण ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

0: अगले कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: मध्य प्रदेश का प्रसारण, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: श्रोताओं नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका अपना ये कार्यक्रम जुड़ा होता है आपकी फरमाइश से और आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं टेलीफोन के माध्यम से। हमारा नंबर 2660902660902 और भोपाल का स्टडी कोड 0755। हेलो,
3: हाँ नमस्ते मैडम जी।
2: जी नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: हाँ ध्रुवाराम साहू बोल रहा हूँ, कन्या दमो विकासखंड बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से।
2: जी साहू जी कैसे हैं?
3: बहुत अच्छे हैं।
2: और क्या चल रहा है इस समय?
3: बात खेती किसानी तैयारी चल रही है अभी।
2: हाँ मौसम अब तैयारी वाला आ गया है।
3: हाँ बिल्कुल, मौसम बादल वाला बना हुआ है और बूंदाबांदी हल्की बारिश हो रही है अभी। हाँ
2: तो ये बताइए कि कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
3: कार्यक्रम में फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा। और गीत के बोल है भीड़ में तरहाई में, ये वाला गीत सुना दीजिए। बहुत दिन बाद आपसे बातचीत हो रही है।
2: जी हाँ,
3: एकदम 1.5 साल के बाद।
2: बहुत लंबे समय के बाद बात हो रही है, पर ये कितनी अच्छी बात है कि बात हो रही है और हम आप तक पहुँचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। आनंद लीजिएगा।
3: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: हाँ, मेरा नमस्कार, मुबारक बोला सीबरी एमपी चंदनपुरा।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मुबारक खान।
0: मुबारक खान, क्या बात है खान साहब, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: 3 महीने के बाद मैंने फोन लगाया।
0: 3 महीने के बाद लगा, तो ये बताइए कि इस बात की खुशी है कि 3 महीने बाद लगा, या ये नाराजगी है कि 3 महीने तक लगा नहीं?
1: मैडम देखो, लग जाता है तो खुशी हो रही है, नहीं लगा तो नाराजगी।
0: मतलब आज इतने दिन की नाराजगी दूर हो गई आपकी?
1: 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद ट्राई तो कर रहे थे।
0: जी जी,
1: 15 दिन के बाद फिर नहीं लगा, तो अब लग जाता, नहीं लगा तो नहीं लगता। वो
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही बात है,
1: कोई दिक्कत नहीं। पता जब मेरा हजारों आदमी जुड़े हैं से अपने, मतलब जा रही में किसी का हो गया काम तो हो जाता है, उसमें नहीं होता, नहीं लग पा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: खुदा गवाह का सुनवा देना कोई सा गाना।
0: खुदा गवाह का कौन सा गाना?
1: वो गाना आना है उसमें, वो का नाम भूलिया मैं उसका। अरे तो उसमें पूरे गाने अच्छे हैं, उसमें तो
0: पूरे गाने अच्छे हैं, तो कोई सा भी गीत सुनवा दिया जाए।
1: हाँ,
0: अपनी पसंद का गीत सुनिए और आनंद लीजिए।
1: ठीक है मैडम, नमस्कार।

0: हेलो,
1: जय माता जी।
0: नमस्कार। फोन
1: करें, मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, आप सुनाओ।
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। क्या चल रहा है इस समय?
1: बस मैडम आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और अभी घर पे है, धूप है, अच्छी खासी है। आप उधर बताओ मौसम कैसा हो रहा है?
0: हमारे यहाँ तो धूप और बादल दोनों थोड़ी आंख में चोली खेल रहे हैं और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बौछारें कह लीजिए या जरा सी बूंदाबांदी हो जाती है, बाकी तो मौसम अभी गर्म है।
1: हाँ जी, इधर भी ऐसा ही हो रहा मौसम, बूंदाबांदी कल परसों हुई थी पर अचानक फिर बादल हो जाते हैं, कभी धूप हो जाती है।
0: सही बात है, सब अपनी पूरी एक प्रक्रिया से गुजरकर ही परिणाम तक आते हैं, तो बादल भी लुका छिपी खेलेंगे, थोड़ा सताएंगे, थोड़ा हैरान करेंगे, उसके बाद बरसेंगे।
1: जी मैडम।
0: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा घर वाली और बाहर वाली।
0: गीत के बोल,
1: उसमें गीत के बोल है नेपाल की ठंडी हवा।
0: आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है, धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम
1: जी। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार।
1: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ, ग्राम सनमतिया जिला गुना से।
0: जी मांगीलाल जी, कैसे हैं?
1: बस बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
0: बिल्कुल, आपकी आशा एकदम शत प्रतिशत सही है। हम एकदम प्रसन्न हैं, बढ़िया हैं, और आपके साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो मौसम क्या कह रहा है इस समय?
1: मौसम ये कह रहा है कि 19 तारीख में तो हमारे क्षेत्र में बढ़िया बारिश हुई।
0: अच्छा।
1: और 19 से आज तक नहीं है, और अब बदल आना शुरू हो गए, काले काले बदल आ जाते हैं 19 तारीख से और आज तक, और शाम को 6-7 बजे साफ मौसम हो जाता है।
0: अच्छा।
1: और बढ़िया, अब बस बदल आना शुरू हो गए, ऐसा खराब होगी, लेकिन शाम तक साफ हो जाता है।
0: साफ हो जाते हाँ, वो भी थोड़े से इठलाते हैं थोड़े से, तो वो माहौल बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बस अब बारिश होने ही वाली है।
1: जी सही है बहन जी, इंतजार भी है, सभी लोगों का इंतजार है कि बारिश कब होए, कब हम फसल बोए।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: सबको इंतजार है।
0: कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे आप?
1: बहन जी, फिल्म का नाम है 9-2-11।
0: 9-2-11
1: जी।
0: और गीत के बोल?
1: आँखों में क्या है पहला बादल।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम
1: जी। नमस्ते मैम
0: जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन बात कर रहे हैं
1: जी? अरविंद अग्रवाल
0: जी। अरविंद जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया हैं, आप कैसी हैं दीदी?
0: हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो बताइए क्या चल रहा है इस समय?
1: बस दुकान में बैठे हैं, आपको याद किया, लगाया फोन, लग गया।
0: बहुत बढ़िया बात है, तो जल्दी से गीत भी बता दीजिए, कौन सा सुनना चाहेंगे
1: जी? फिल्म का नाम रहेगा मोहरा।
0: मोहरा, और गीत के बोल?
1: ना कजरे की धार।
0: तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।
1: आप इसी महीने आपको हो जाना है रिटायर क्या मैम?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसी महीने 30 तारीख को विदा लेंगे आप सबसे।
1: आखिरी का आखिरी बार बात हो रही हो आपसे, ना लगे अब।
0: वैसे भी 7 दिन 10 दिन का गैप रखना है आपको, तो वो भी 30 के पहले बातचीत नहीं हो पाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो कार्यक्रम के पैरामीटर्स हैं, जो बेहतर चीजें हैं, उनका ध्यान रखेंगे और कार्यक्रम से आकाशवाणी से जुड़े रहेंगे।

0: फोन करें गीची में कार्यक्रम।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं दीदी मनोज नामदेव।
0: जी मनोज जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, बहुत अच्छे हैं।
0: बहुत अच्छे हैं, क्या चल रहा है?
1: बस दीदी कुछ नहीं, अपने शॉप पर काम कर रहे थे और रेगुलर आपका प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे सबको?
1: आज के कार्यक्रम में सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा अनोखा अंदाज और उसमें गाना है तू दीवाना पागल मेरा हो गया।
0: तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन करेंगे
1: हेलो,
0: सुने
1: हाँ
0: कार्यक्रम
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी। नमस्कार
1: हरदयाल जाटव, जिला क्षेत्रीय मध्य प्रदेश।
0: जी। जाटव जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बस बढ़िया मैडम जी, मजे में है।
0: क्या चल रहा है?
1: आज अभी तो खेती की तैयारी हो रही, जुताई हो रही है।
0: तो बताइए
1: बढ़िया
0: कौन
1: गाना सुना दीजिए।
0: जी, कौन सा गीत सुनना है?
1: बाजीगर,
0: बाजीगर का कौन सा?
1: गाने के बोल भी यही है, फिल्म का नाम भी यही है।

0: करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: मैम नमस्कार
0: जी। नमस्ते,
1: मैं रमेश प्रजापति ग्राम माया तहसील रहटी जिला सीहोर एमपी से बोल रहा हूँ।
0: जी रमेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया हूँ मैम।
0: और क्या हो रहा है इस समय?
1: मैं सिलाई कपड़े काट रहा था, सिलाई काम करता हूँ, दुकान पे कपड़े काट रहा था।
0: और फोन लगा लिया।
1: मुझे याद आया मैंने कि 2-3 महीने होगा जब से फोन नहीं लगाया, आज ट्राई करता हूँ तो लग भी गया।
0: अरे क्या बात है, आज ज्यादातर श्रोता 2-3 महीने बाद ही फोन लगा रहे हैं। बताएं कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में सुनवाया जाए?
1: कण कण में भगवान,
0: उसका कौन सा गीत?
1: पिया की मैं तो बनी रे जुगनिया।
0: अब एक काम कीजिएगा, आज आप हमारी बात मान के
1: जी जी
0: अपने पसंद के गीतों की एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें कम से कम 25 गाने लिखे हों फिल्मों के साथ, कम से कम 25, ठीक है? और जो गाना आज आपने सुनना चाहा है या फरमाइश की है उसके ऊपर राइट का टिक लगाना जिससे कि आगे उस गाने को दोहराए नहीं।
1: जी।
0: उसे दो
1: जी।
0: बड़े फायदे होंगे, एक तो आपको अपनी ही पसंद का गीत सुनने को मिलेगा और दूसरा कार्यक्रम बेहतर बन पड़ेगा।
1: जी।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम।
1: जी मैम।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: सनी शर्मा, गंजवासुदास है। सनी शर्मा।
0: सनी शर्मा, तो सनी क्या करते हैं?
1: डेयरी फार्म।
0: उसमें काम करते हैं? आपका है क्या है, कुछ पूरी बात बताइए।
1: हाँ, डेयरी फार्म है, घर का।
0: घर का, तो उसमें क्या क्या काम कर लेते हैं आप?
1: उसमें भैंस और डोरों का
0: तो देखभाल करते हैं,
1: बनाना, गाय भैंस को चराना।
0: हाँ, वही पूछ रहे हैं कि थोड़ा विस्तार में बताएं तो पता लगे क्या क्या काम होते हैं इस तरह की चीजों के। तो कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: देखभाल करना, चारा रखना।
0: अच्छा, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दोस्ताना फिल्म का सॉन्ग।
0: कौन सा? दोस्ताना का।
1: दोस्त सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
0: बिल्कुल, तो ये गीत पसंद है इसलिए सुनना चाह रहे हैं या अपने किसी दोस्त को सुनवाना चाह रहे हैं?
1: ये गीत पसंद है, दोस्त को भी सुनवाना चाहते हैं।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत पहुंच रहा है आप तक, आनंद लीजिए।
1: जी जी जी जी जी।

0: गीत के साथ ही पूर्ण कार्यक्रम फोन करें गीत सुनिए संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्यस्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। राज्य वित्त आयोग का दल आज भोपाल संभाग के दौरे के दौरान सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद संभाग आयुक्त कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश में मॉनसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। और महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा। ये मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये नगमा। लिखने वाले हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है अनुराग फिल्म का नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अनुराग फिल्म से ये नगमा।

राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज भट्ट। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा।

0: नाम अनुराधा, गीत की बोल शैलेंद्र के, तर्ज रवि किशन की।
1: जाने कैसे सपने

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं प्रेमिलागंज और टोल जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। धमनी किरवई से ममता धीवर, मुन्नी धीवर, समय लाल युवांश, कुणाल और गोविंद धीवर। आप सभी ने सुनना चाहा है तुम पुनः भूल पाएंगे फिल्म गाना हुआ, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये नखवा।

अयुब संतल ही आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं। औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल, राजदीप और राशि, जबलपुर से सुमन पांडे, दिव्यानी, दिव्य, निक्की, भोपाल से राग रोही और प्रशांत दुबे, अमरावती महाराष्ट्र से कमिल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, आसमा, सालिया, शुएब, मुस्तबा, रऊफ, शौर, शाहिद, अकोला से ही लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली। तो आप सभी ने सुनना चाहा है हसीना मान जाएगी फंतनखवा, आवाज़ें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। तो आइए आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये।

एक सुबह आप सभी की फरमाइश अमलेश्वर से तुमन सुमन मिथलेश तारनी सूरज ज्योति और रियांश भटेपाड़ा से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार आदर्श नगर हाटोल से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश और सौरभ शर्मा आप सभी ने सुनना चाहा है कुमार सानू की आवाज में हो प्यार करें फिल्म का ये नगमा।

इस गीत के साथ ही आपकी ख्वाहिश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुना रहे हैं भरतमोहिनी का छठवां भाग।

0: भुवन मोहिनी में आपने सुना, राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्न सेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। निर्वासित भुवन मोहिनी ने इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन के यहां आकर आश्रय लिया, परंतु कुछ ही महीनों के बाद राजकुमार भी राजमाता से नाराज होकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गया। लोग उसे न पहचान सके इसलिए वो आश्रम में श्रेष्ठ पुत्र बनकर रहने लगा, परंतु वास्तविकता इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन तक पहुंची गई और उन्होंने राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाया और एक उत्सव आयोजित कर सम्मानित किया। इस सम्मान उत्सव में भुवन मोहिनी का गायन और नृत्य हुआ, जिसके माध्यम से भुवन मोहिनी अपनी पीड़ा को राजकुमार के हृदय तक पहुंचाने में सफल हुई। भुवन मोहिनी को दुखी पाकर राजकुमार भी बहुत दुखी हुआ, परंतु इसी बीच हुआ ये कि लौटते समय रास्ते में उसकी नजदीकी राजकुमारी चंद्रहासिनी से पड़ गई। राजकुमार भुवन मोहिनी को अपने आवास में बुलवाता है, परंतु चंद्रहासिनी भी आ जाती है। आगे क्या होता है ये सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की छठवीं कड़ी में।
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
2: एवमस्तु।
1: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती है कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

0: क्या इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और वो भी इसी समय?
1: अवश्य देव।
0: किंतु मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण और गोपनीय होते हैं। फिर भी यदि तुम उत्तर चाहती ही हो तो स्वयं तुम्हें मेरे जीवन और जीवन की भावनाओं का अधिक ज्ञान है। तुम स्वयं राजकुमारी के साथ बैठकर वही उत्तर दे सकती हो जो मैं स्वयं देता।
1: देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी ने अपनी ओर से निश्चय कर लिया है कि वो या तो अपने जीवन में आपको प्राप्त करेंगी, अन्यथा आजीवन कुमारी रहकर निराश जीवन का पटाक्षेप कर देंगी।
0: क्या ऐसे संकल्प का प्रत्यक्ष लाभ क्या है?
1: ना हो, किंतु ऐसे जीवन को स्वीकार करने की प्रेरणा भी तो आपने ही दी है। आप ही ने राजकुमारी के शून्य जीवन में अनेक सरस भावनाओं को अनुप्राणित किया है। आप ही के द्वारा प्रेमोपहार प्राप्त कर राजकुमारी पूर्ण रूप से कृतकृत्य हुई है। वो देखिए ना, आपका हृदय चूमने वाला मुक्तामणि माणिक हार आज चंद्रहासिनी के जीवन की अमूल्य निधि बन

0: गया है और अपनी कनिष्ठिका उंगली दिखाइए। ये अमूल्य मणिजड़ित अंगूठी राजकुमारी ने प्रेमोपहार के रूप में प्रदान की है, इसकी लाज तो रखनी होगी ना।
1: आज तुम्हें क्या हो गया है भुवन मोहिनी, क्यों आत्मनाश करने पर तुली हो? जो हृदय तुम्हारी भेंट चढ़ गया उसे तुम अस्वीकार भले ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारी ओर से ये प्रस्ताव शोभा नहीं देता कि एक बार समर्पित किया हुआ हृदय दोबारा समर्पण का व्यापार रचाए।
0: देव, बड़ी तत्परता, खोज और प्रयास के पश्चात मैंने राजकुमारी चंद्रहासिनी को आपके योग्य जीवन संगनी के रूप में चुना था। मैं जानती हूँ कि देव, यदि अपने स्नेह दान से मुझे भाग्यशाली बनाते तो मैं सारे साम्राज्य में अपने साथ आपके वंश की भी अपकीर्ति कराती। युगों की संचित आपकी कीर्ति और प्रतिष्ठा मेरे कारण नष्ट हो जाती और आपके पवित्र और यशस्वी कुल में कलंक की कालिमा पुत जाती। मैं अपने तुच्छ प्रेम के नाम पर आपका सर्वनाश नहीं चाहती थी देव। आपकी अपकीर्ति को मैं सहन नहीं कर सकती थी। मैं आपके चरण छूती हूं मेरे प्रेम के वरदायक देवता। यदि मुझे अपने चरणों के आश्रय से दूर न रखना चाहते हो तो राजकुमारी चंद्रहासिनी को अपने जीवन संगनी के रूप में अवश्य चुने। मैं राजकुमारी के माध्यम से इन चरणों की पावन पूजा का सुख लूटूंगी और अपने इस तुच्छ जीवन को सफल और सार्थक बना लूंगी।
1: तुम ये क्या कर रही हो भुवन मोहिनी? मेरे हृदय स्थल में अपनी प्रतिमा के स्थान पर चंद्रहासिनी की प्रतिमा स्थापित करना चाहती हो? तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि प्रेम व्यवहार में विकल्प नहीं हुआ करते?
2: राजकुमार और भुवन मोहिनी के मध्य हो रहा ये पूरा वार्तालाप मेरा अपमान है या मेरा आदर, समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे लिए प्रेम की भीख मांगी जा रही है और वो भी एक नर्तकी के द्वारा जो इस प्रेम की सौमनी भी है, समझ नहीं पा रही हूँ कि अपनी जिस सौंदर्य की मद में चूर होकर मैं भुवन मोहिनी को कई बार अपमानित कर चुकी हूँ, उसी सौंदर्य को भुवन मोहिनी के किस आकर्षण के वशीभूत होकर राजकुमार चूर चूर कर रहे हैं। क्यों एक नर्तकी को इतना ऊंचा और महान बना रहे हैं कि वो सैकड़ों राजपुत्रियों के रूप और वंशगत महानता से कहीं अधिक आदरणीय और श्रद्धामय बनती जा रही है?
1: तो ठीक है भुवन मोहिनी, यदि मुझे विवाह करना ही पड़ा तो अवश्य ही मैं राजकुमारी का संवरण करूंगा, किंतु प्रश्न यह है कि राजकुमारी कब तक प्रतीक्षा करेंगी?
2: क्षमा चाहती हूं देव, आपने प्रश्न किया कि मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगी, तो यही कहना चाहूंगी कि आपको प्राप्त करने की आशा मेरे जीवन में इतनी मूल्यवान है कि मैं एक नहीं अनंत जीवन तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि मैंने जाना कि देव के जीवन का व्रत किसी महान उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग करना है तो उस समय भी मैं आपके ही पथ का अनुसरण करूंगी।

ये कैसी दुविधा है। भुवन मोहिनी और चंद्रहासिनी मेरे लिए प्रेममयी सरिता की दो दुकोल के समान है, जिनमें परस्पर विचार साम्य देखकर समझ नहीं आता कि अंततः मुझे किस किनारे का सहारा लेना होगा। यदि मैं एक किनारे में ठहर कर अपने भ्रमित और उत्तप्त जीवन की थकान मिटाने का प्रयास करूंगा तो स्वाभाविक रूप से दूसरा किनारा शून्य, नीरव और

0: नेहसार बन जाएगा। एक ओर यदि मिलन की रागिनी गुंजरित होकर बसंत की मादकता भरेगी, तो दूसरी ओर दीर्घ वियोग की विहाग रागिनी करुणा और अनमनेपन की सृष्टि करेगी। अंततः क्या होगा? जीवन में अंतर्द्वंद पना रहेगा जो पल भर भी शांत नहीं रहने देगा। भुवन मोहिनी कितनी आत्मत्यागनी है। उसने जाने अनजाने यौवन प्रभात में प्रेम के जिस कोमल वृक्ष को आरोपित किया था और उसे अपने स्नेह ममता और त्याग के जल से सींच सींच कर पल्लवित और पुष्पित किया था, आज वो प्रेम वृक्ष अपनी उन्नत शाखाओं को चारों ओर फैलाए गर्व से उसको देख रहा है। अभी वो समय आ गया था जब वो प्रेम वृक्ष अपने मधुर फलों का रसा स्वादन कराकर चिर व्यथित और उत्तप्त जीवन को शांति प्रदान करता। तो भुवन मोहिनी एक दार्शनिक की भांति उस प्रेम वृक्ष की छाया और फल से अनासक्त हो रही है, और दूसरी ओर मैं एक निविड़ अंधकार से भरे आसक्त जीवन को लेकर मृग तृष्णा में ही जीवन व्यतीत करने की बात सोच रहा हूं। क्या ये धोखा नहीं है? आज राजकुमारी सर्वांतःकरण से अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को सौंपने जा रही है जिसका हृदय अतीत काल से ही दूसरे की धरोहर बन चुका है। राजकुमारी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सुकुमार और पवित्र जीवन का सर्वनाश करूं। तनिक सोचो, ये महान मानव जीवन अनेक लुभावने आकर्षणों का केंद्र बिंदु बनने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, ये तो जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उपहार है।
1: देव, मैं नारी हूं, स्वयं मायामयी, मुझे मुक्ति नहीं बंधन ही चाहिए। इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है और आपकी सेवा में ही मेरे जीवन का जप तप और भोग निहित है। आप स्वयं ज्ञान आश्रय हैं। मैं इन चरणों को त्याग कर अन्यत्र कहां जाऊंगी? मैं चाहूंगी कि आत्मोद्धार पथ पर आप ही का अनुसरण करूं, किंतु मैं जो कुछ करूंगी वो अपने आप नहीं, आपसे प्रेरणा लेकर, आपकी छाया बनकर। मैं ज्ञान प्रकरण की उपासिका नहीं, मेरा निश्चल ज्ञान यही है कि पग पग पर आपका अनुगमन करते हुए आपकी साधना की सिद्धि बनूं। दूसरा प्रश्न है भुवन मोहिनी का, तो मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहती। अंतःकरण से केवल यही कह सकती हूं कि उसका चरित्र उदात्त है, वो महान है। उसने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का व्रत लिया है। मैं अपने को उसकी चेरी समझूंगी, भले ही कहने को वो नर्तकी हो और मैं राजपुत्री। मैंने अपनी झोली उसके समक्ष फैलाई है। उसने उदारता पूर्वक मुझे वो सब कुछ दे डाला है जो एक नारी दूसरी नारी को नहीं दे सकती। इसलिए देव, मैं सदैव उसकी कृतज्ञ रहूंगी। उसकी छोटी बहन बनकर उसके अतुलित प्यार की भागनी बनूंगी।
0: ज्ञात होता है कि राजकुमारी ने महानता के आदर्श भुवन मोहिनी से प्राप्त कर लिए हैं और भुवन मोहिनी को परखने की दृष्टि भी प्राप्त कर ली है। मुझे अब कोई आपत्ति नहीं, किंतु इतना फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भुवन मोहिनी की स्मृति को मेरे हृदय से उखाड़ फेंकने का प्रयास कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैं अपनी प्रियता प्रदान करने के स्थान पर केवल घृणा ही दे सकूंगा।
1: मुझे स्वीकार है, मैं बस आपके चरणों में स्थान पाना चाहती हूँ।
2: अरे उठिए उठिए राजकुमारी, आज से हम दोनों सगी बहन ही हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में समान भागीदार होंगी।

0: आज तो राजकुमारी का अतिथि सत्कार करना मेरा परम धर्म है। आज हम सब मिलकर एक प्रेममय सहभोज का आयोजन करें और कल इसी समय हम सब कुरुक्षेत्र के मेले की ओर प्रस्थान करेंगे।
1: मित्र, आज इस पर्णकुटी में कुबेर और सुरेश की राजसभा का सुख प्राप्त हो रहा है। देव, यदि आज्ञा हो तो मैं भी अपनी सेवा द्वारा कृतकृत्य हो लूं।
0: क्यों नहीं अरण्यक, देखो आज इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी तुम्हारे निर्वासित युवराज की अतिथि हैं। उनकी अतिथि सेवा के लिए उत्तम से उत्तम राजसी भोजन बनवाओ। और हां, जो भी भूखा प्यासा अतिथि इधर से गुजरे उन सबका भरपूर आतिथ्य करके दान दक्षिणा आदि देकर विदा कराओ।
1: जो आज्ञा युवराज।
2: अरण्यक, बोलो सारथी, हम लोग कब तक रहेंगे कुरुक्षेत्र के मेले में?
3: जब तक हमारे स्वामी चाहेंगे।
2: एक बात बताओ अरण्यक।
3: हाँ।
2: राजकुमार जी विवाह तो राजकुमारी जी के साथ ही करेंगे ना?
3: क्यों?
2: दो दो सौंदर्य स्वामिनियों के साथ हमारे स्वामी रमण कर रहे हैं। भुवन मोहिनी को लेकर राजकुमारी जी को कोई आपत्ति नहीं दिखती।
4: समझ में नहीं आता कि युवराज के हृदय के समीप अधिक कौन है।
3: मैं बताता हूँ।
1: इस प्रश्न का उत्तर तो संभवतः
3: राजकुमार के पास भी ना होगा।
1: परंतु एक बात मैं बता दूं।
3: क्या?
1: राजकुमार जी को तुम उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं,
4: इसीलिए तो तुमसे पूछा।
1: तुम देखते होगे राजकुमार का मन इस धार्मिक मेले में आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने, साधु महात्माओं से विवेचना करने में अधिक लग रहा है।
4: हाँ, सही बात है।
1: इसका तात्पर्य क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
1: ये कि राजकुमार जी भोग विलास के सरोवर में होते हुए भी इन सब से निर्लिप्त।
4: अरे हाँ, परंतु
1: वो देखो तीनों लोग तैयार हो गए हैं। अब शीघ्रता करो।
4: चलो चलो चलो,
3: रथ तैयार है श्रीमान।
0: तो फिर चलो। देवियों, आप लोग तैयार हैं ना?
5: हाँ स्वामी। राजकुमारी जी आइए, रथ पर विराजिए।
6: अवश्य भुवन मोहिनी, आओ, तुम भी आओ।
5: जो आज्ञा। आइए स्वामी।
3: चलो सारथी।
0: अरण्यक, तनिक पता तो लगाओ यहाँ भीड़ भाड़ कैसी है।
3: युवराज और आपके साथ ही देवियां इस मेले में विशेष आकर्षण पहले ही बन चुके हैं। अब तो लोग मेला देखने की अपेक्षा आप लोगों के दर्शन के लिए अधिक इच्छुक हैं।
5: देव, आप चिंतित दिख रहे हैं।
0: कुछ विशेष बात नहीं है भुवन मोहिनी।
3: युवराज, इसी रास्ते से सम्राट यानी आपके पिताश्री निकल रहे हैं और माताश्री भी साथ में हैं।
5: अब क्या होगा?
0: धैर्य रखो, मैं देखता हूं।
5: राजकुमारी जी, आप क्यों चुप हैं?
6: ऐसा लगता है जैसे राजकुमार जी को मुझ में कोई रुचि ही ना हो।
5: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, शीघ्र ही आप राजकुमार जी को समझ जाएंगी। उनके हृदयागार में आप ही सुशोभित हैं, विश्वास रखिए।
3: युवराज, पिता महाराज ने आपको देख लिया है, उन्होंने आपको बुलवाया है। उनके साथ महाराज आदित्य सेन भी हैं।
0: क्या करना चाहिए मुझे?
3: करना क्या चाहिए, वो देखिए, वो लोग स्वयं इधर आ रहे हैं।
7: पुत्र विजय शर्मा।
0: महाराज के चरणों में प्रणाम। प्रणाम महाराज आदित्य सेन।
8: चिरंजीवी भव, हमारी पुत्री कहाँ है?
3: वो रथ पर बैठी हैं। हम अभी उन्हें साथ सम्मान ले आते।
6: पुत्र,
0: माँ,
6: तुम क्यों हमें छोड़ के चले आए?
3: महाराज, आपकी भावी पुत्रवधु।
6: चरण स्पर्श पिताजी।
7: अरे आ पुत्री, मेरे हृदय से लग जा।
8: पुत्री, ये तुम्हारी भावी माँ है।
6: चरण स्पर्श माँ। अति सुंदर महाराज आदित्य सेन, सचमुच आपकी पुत्री सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है।

0: प्रणाम सम्राट, प्रणाम साम्राज्य।
1: तुम वही नर्तकी भुवन मोहिनी हो ना?
2: हाँ सम्राट, हमने इसे राजा श्रेय दिया है, परंतु इसी ने भावी विवाह की पृष्ठभूमि तैयार की है।
1: युवराज, भावी सम्राट,
3: देव
1: हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अपनी धारा नगरी को लौटो। साम्राज्य की प्रजा अपने प्रिय युवराज और भावी सम्राट का कुशल क्षेम जानने के लिए उत्सुक है। और भुवन मोहिनी?
0: आज्ञा देव।
1: इन एकांत दिनों में तुमने अवश्य ही युवराज के प्रति अपनी सेवाएं समर्पित की होंगी, अतः तुम्हारा निर्वासन निषेध किया जाता है। चलो तुम भी अपनी मातृभूमि के दर्शन लो। अब मैं शीघ्र ही अपनी पुत्र वधु को बुलाने के लिए पुनः इंद्रप्रस्थ आऊंगा और महाराज आदित्य से इनकी हार्दिक आकांक्षा को पूर्ण करूंगा।
4: आ पुत्री, आ एक बार फिर से मेरे हृदय से लग जा। अरे तुम्हारे गले में ये हार, अर्थात मेरे विजय श्रवा ने तुम्हें पहले ही अपना मधुर प्रेमोपहार समर्पित कर दिया है। बोलो, विजय श्रवा के प्रति कृतकृत्य हो ना?
5: आपके चरणों की वरदायनी सेवा का अधिकार मेरे लिए बना रहे माँ।
4: ऐसा ही होगा पुत्री। युवराज।
3: आज्ञा माँ।
4: समस्त देश पर हूर जाति का आक्रमण आसन्न है, देखना अपने दायित्वों को। मेरे दूध की लाज रखना पुत्र, क्षत्राणी का दूध राष्ट्र सम्मान के बलिदान में मूल्य की सदैव अपेक्षा करता आया है। तुम्हें भी इस आसक्ति से निवृत्ति प्राप्त कर राष्ट्र रक्षा के पवित्र दायित्व का निर्वाह करना होगा। तुम्हारी नसों और धमनियों में भी उष्ण रक्त का प्रवाह होना चाहिए, जिससे छत्राणी के दूध की गौरव गरिमा बनी रहे।
3: ऐसा ही होगा राजमाता। भारत साम्राज्य का दूध समस्त राष्ट्र के गौरव की रक्षा का भार वहन करेगा। होणों को विजय श्रवा की शक्ति पराजित करेगी।
1: युवराज, आज मैं वृद्ध और अशक्त हो गया हूँ, परंतु मैंने राष्ट्र को तुम जैसा प्रतिनिधि समर्पित किया है। आज वंश और कुल के सम्मान की रक्षा का दायित्व मुझसे अधिक तुम पर आ पड़ा है। साम्राज्य की सेना अपने भावी सम्राट के अधिनायकत्व में उन समस्त जातियों को पराजित करेगी जो भारतीय वैभव के सपनों द्वारा आक्रांत हैं। किंतु सुना है कि हूण जाति एक बर्बर जाति है, जो समृद्धि और वैभव की प्राप्ति के लिए रक्त सागर का मंथन करके विजय श्री के साथ लौटना चाहती है। मैं चाहता हूं युवराज का प्रेम त्रसित हृदय शीघ्र संतुष्ट होकर राष्ट्र रक्षा के प्रश्न पर गंभीरतम विचार करे। महाराज आदित्य सेन,
2: कहिए सम्राट।
1: आप यथाशीघ्र विवाह का आयोजन करें, ताकि संस्कार से निवृत्त होकर युवराज राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर हों। मेरी तीर्थ यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि कुरुक्षेत्र की इस अति प्राचीन रणस्थली में देश भर की प्रजा और खंड राज्यों के नरेश एकत्र होंगे और राष्ट्र रक्षा पर एक मन से हम सब लोग मिलकर निर्णय करेंगे।
3: सम्राट क्षमा करें, भारत का भावी सम्राट ये कभी नहीं चाहेगा कि जब राष्ट्र रक्षा की विकट घड़ी उपस्थित हो तब वो प्रणय बंधन में फंसकर विलासी कहलाए। सम्राट, मुझे माता के दूध की गौरवमयी परंपरा को राष्ट्र के प्रांगण में सदैव विकसित रखना है। मृत्युंजय के उपासक कभी भी विलास की तुच्छ वृत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं अगणित चंद्रहासिनी और राजकुमारियों के प्रेम संबंधों को बलिदान कर दूंगा।
1: पिता न चाहेगा कि राष्ट्र की वीरांगनाएं युद्ध स्थली में उपस्थित हों। तुम्हें ज्ञान नहीं होगा कि कामदेव सा अतुल रूप वैभव लिए ये हमारा पुत्र महान वीर और पराक्रमी भी है। विश्वास करो कि वो युद्ध में अवश्य ही हूणों को पराजित करेगा। फिर भी तुम जैसी वीरांगना पुत्र वधु पाकर मैं अवश्य गौरवान्वित होऊंगा।

0: संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की छठी कड़ी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धापूर्वक पुण्य स्मरण कर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट पर कहा कि उनका शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो विशेष रूप से बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रदेश में आज से साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 चलाया जा रहा है। प्रदेश पुलिस के इस अभियान का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी यह ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसे बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी है। प्रदेश में मानसून अगले 2 से 3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में दाखिल हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। और महिला T20 वर्ल्ड कप में आज मेजबान इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से है। यह मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। बेहतर रन रेट के चलते इंग्लैंड टॉप पर बना हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मणिदीप 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज और आकाशवाणी के ऑफिशियल न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम।

बेचारा कहते हैं, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी के साथ सफलता भी मिलेगी, क्योंकि विचारों में नकारात्मकता सरल कार्य को भी कठिन बना देती है, काम बोझिल लगने लगता, शांत मन और प्रसन्न रहकर किए गए कार्य को सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ ही खुशी के साथ काम करें तो सफलता भी प्राप्त होगी। और इस बीच हम महिला सभा को लेकर आप

0: बलिदान दिवस साहस, स्वाभिमान, देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। ये दिन हमें महान योद्धा रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने राज्य, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। रानी दुर्गावती का जन्म वर्ष 1524 में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। पति के निधन के बाद उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण के संरक्षक के रूप में राज्य की बागडोर संभाली। वे एक कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय शासिका थी, साथ ही पराक्रमी योद्धा भी। वर्ष 1564 में मुगल सेना ने गोंडवाना पर आक्रमण किया और रानी दुर्गावती ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद शत्रु से डटकर मुकाबला किया। युद्ध के दौरान घायल होने के बाद भी हार नहीं मानी। जिस समय उनको लगा कि उनकी स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनका बलिदान भी अगर दे दिया जाए तो बड़ी बात नहीं, और उन्होंने ऐसा ही किया। अपना सर्वस्व निछावर करके अपने प्राणियों का बलिदान दे दिया। उनका बलिदान, उनका त्याग भारतीय इतिहास में वीरता और आत्मसम्मान का अद्वितीय उदाहरण है। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस, देश प्रेम एवं आत्मविश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। उनका बलिदान महिलाओं की शक्ति, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। आज भी वे पूरे देश समाज में सम्मान का, साहस का प्रतीक के रूप में याद की जाती हैं। मध्य प्रदेश का गौरव है, देश का गौरव है। उनके बलिदान दिवस पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और नारी शक्ति को उनके कार्यों, व्यक्तित्व और आदर्श से परिचित कराया जाता है, जिससे प्रेरित होकर हमारे युवा वर्ग भी राष्ट्र कल्याण के लिए आगे आए। रानी दुर्गावती का बलिदान केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की एक अमर गाथा है। उनके जीवन से प्रेरणा लें, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और समाज के, राष्ट्र के विकास में योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। वीरता की मिसाल थी रानी दुर्गावती, स्वाभिमान की पहचान थी रानी दुर्गावती। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वाली अमर वीरांगना रानी दुर्गावती को उनके बलिदान दिवस पर हमारा शत शत नमन। तो ये तो हमने आपसे बात की रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर, उनके व्यक्तित्व पर, और कार्यक्रम अभी और हैं। हम लौटते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम महिला सभा में, और अब आपको ले चलते हैं संगीत की ओर और सुनते हैं एक बेहद माधुर्य से रचा बसा, शास्त्रीयता की अनेक विशेषताएं लिए हुए ये गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म स्वर्ण सुंदरी से, जिसे गाया है दो महान गायकों ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। इस गीत के बोल लिखे हैं भरत व्यास जी ने और संगीतबद्ध किया है आदिनाथ नारायण ने। और इस गीत की विशेषताओं की बात करें तो ये गीत एक दो नहीं पूरे चार चार रागों का प्रयोग करके बेहद खूबसूरती और मधुरता के साथ बनाया गया है। इस गीत का मुखड़ा और पहला अंतरा जो है वो है सोहिनी राग में, और उसके बाद राग बहार, राग जौनपुरी और यमन कल्याण का भी खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। और इस गीत में कुछ ऐसे मुश्किल आलाप भी लिए गए हैं जो सिर्फ महान गायक लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ही निभा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इतनी सारी विशेषताओं से भरा हुआ ये गीत।

0: अभी हमने ये प्यारा सा गीत सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी स्वर्ण सुंदरी, भरत व्यास ने शब्द लिखे थे और संगीत से सजाया था आदिनाथ नारायण ने। आज हमारी महिलाएं घर परिवार संभालने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही हैं, साथ ही वे जो सपने देखती हैं उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत भी कर रही हैं, सपने देख रही हैं और साकार भी कर रही हैं। तो इन्हीं बातों से ओतप्रोत हम वार्ता आज आपको सुनवा रहे हैं, सपनों को साकार करती महिलाएं। वार्ताकार हैं काजल सोनी, आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: आज का हमारा टॉपिक है सपनों को साकार करती महिलाएं। दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक बंधनों को तोड़कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। वे शिक्षा, व्यवसाय और नेतृत्व के क्षेत्रों में छोटे छोटे प्रयासों से बड़े लक्ष्य हासिल कर रही हैं। यह विषय संघर्ष, आत्मविश्वास और रूढ़ियों को तोड़कर सफलता पाने की प्रेरक कहानियों पर केंद्रित है। उद्यमिता के माध्यम से खुद की पहचान बनाना और परिवार को आर्थिक सहारा देना, शिक्षा के द्वारा रूढ़िवादी सोच को बदलकर नए अवसरों के द्वार खोलना, चुनौतियों का सामना करना और हार न मानते हुए निरंतर प्रयास करना, तकनीकी, खेल और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करना, करियर और घर के बीच संतुलन स्थापित करना जिसमें परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन मायने यह रखता है कि आप उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रही हैं। यदि हम बस सपने देखते रह जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं तो वे सपने हमेशा सपने बनकर रह जाएंगे। किसी का सपना होता है वह कुछ नया सीखे, तो कोई अपने करियर में ऊंची उड़ान भरना चाहता है, तो कोई घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहता है। सपनों को साकार करती महिलाएं के लिए प्रेरणादायक, नारी जब ठान लेती है तो आसमान की ऊंचाइयों को भी छू लेती है। सपनों को हकीकत में बदलने की

की सिर्फ उनमें ही होती है। मजबूत इरादे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती महिलाएं ही सही मायने में नए युग की शिल्पकार हैं। उनके हौसले किसी पर्वत से कम नहीं, जो सपनों को सच करने के लिए हर मुश्किल राह को आसान बना देती हैं। आत्मविश्वास, मेहनत और कभी न हार मानने का जज्बा ही वह कुंजी है जिसमें महिलाएं अपने सपनों को साकार करती हैं। एक कामकाजी महिला सिर्फ अपना घर नहीं, वो अपने सपनों की उड़ान से समाज को नई दिशा भी दिखाती है। मुझे खुद की कई बातें साबित करनी हैं। उनमें से एक यह है कि मैं निडर होकर अपना जीवन जी सकती हूँ। असुविधाजनक परिस्थितियों में सहज होना विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भय की भावनाओं पर काबू पाना भी उतना ही जरूरी है। निडर होकर जीने से नए अवसरों के द्वार खुलते हैं। किसी काम को शुरू करके असफल होने से भी बुरी बात नहीं। किसी काम को शुरू ही ना करना, असफल का डर और उससे जुड़ी शर्मिंदगी अक्सर वह बाधा बन जाती है जो लोगों को अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। इस डर को दूर करने का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि असफलता प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। यह एकमात्र गलत जवाब है। शुरुआत में ही जोखिम ना लेना, आगे के सफर की तैयारी करते समय अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना ना भूलें। किसी भी परियोजना के शुरुआती कदम सबसे अधिक ज्ञानवर्धक हो सकते हैं। अपने विकास और रास्ते में होने वाली खोजों को समझने के लिए समय निकालें। इससे आपका लक्ष्य और भी अधिक संतोषजनक होगा। सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी कल्पना का उपयोग करें तो हमारी संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। हमारी कल्पनाएं हमारे सपने की रूपरेखा तैयार करती हैं। हम अपनी कल्पनाओं को जितना अधिक व्यापक और साहसी बनाते हैं, सपने देखने की हमारी क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। सपने आपकी आत्मा द्वारा आपके विचारों का संगम है। सपनों को साकार करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। आप सभी के साथ सपनों के बारे में अपना विचार साझा करने का अवसर मिला है। सपना एक बहुत ही शानदार और आकर्षक शब्द है और हम सभी के मन में कोई न कोई सपना होता है। वास्तव में सपना हमेशा बहुत सुंदर होता है। वास्तविकता में कुछ भी लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं। लोग हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करना पसंद करते हैं और उन्हें एक प्रिय वाक्य की तरह मानते हैं। सामान्यतः केवल जीवन हमेशा सुखमय ना हो और आप दुनिया की सारी समस्याओं को एक ही बार में हल ना कर सकें, लेकिन आप जो प्रभाव डाल सकते हैं उसे कभी मत आंकिए, क्योंकि इतिहास ने हमें दिखाया है कि साहस संक्रामक हो सकता है और आशा आप में एक जीवन ले सकती है। जीवन की कठिनाइयों में ही हमें अक्सर अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है। इन चुनौतीपूर्ण अनुभवों का लाभ उठाएं। वास्तव में जिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है वे दूसरों के जीवन को प्रभावित करने या आशा जगाने वाले हैं। किसी बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं। आप कभी नहीं जान सकते कि आप किसे प्रेरित कर सकते हैं। और जैसा कि श्रीमती ओबामा ने कहा है, साहस संक्रामक होता है और यह एक ऐसा सुंदर गुण है जिसकी इस दुनिया को अधिक आवश्यकता है। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि फलना फूलना है, और ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और शैली के साथ करना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते हुए हंसी खुशी प्यार और अपने अनूठे स्पर्श के पलों को शामिल करना ना भूलें। दूसरे शब्दों में इस यात्रा का भरपूर आनंद लें, यह एक ही बार मिलती है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। माँ दुर्गा शक्ति का, माँ सरस्वती ज्ञान का और माँ लक्ष्मी समृद्धि का स्वरूप मानी जाती हैं। यह दर्शाता है कि हमारे समाज में महिला की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उनके सामर्थ्य को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। आज देश की महिलाएं कृषि क्षेत्र में भी पूर्ण योगदान दे रही हैं। खेतों में कार्य करने से लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तक महिलाएं कृषि विकास की प्रमुख भागीदार बन चुकी हैं। कई महिला किसान जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त

0: सशक्त बन रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, शिक्षिकाएं और समाज सेवी महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ रही है। आज महिलाएं राजनीति और प्रशासन में भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाएं नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रही हैं। उनके निर्णय और विचार समाज के विकास में नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। महिलाओं की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार आत्मविश्वास है। जब कोई महिला स्वयं पर विश्वास करती है तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आत्मविश्वास ही उसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें अपनी बेटियों को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्हें अपने सपनों का चुनाव करने, अपनी प्रतिभा को विकसित करने और जीवन में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यही सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण है।
1: अभी आपने ये वार्ता सुनी, सपनों को साकार करती महिलाएं। वार्ताकार थी काजल सोनी। उम्मीद है वार्ता आपको पसंद आई होगी। आज डिजिटल युग मैं मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इनका सही उपयोग जीवन को आसान बनाता है, लेकिन अत्यधिक उपयोग जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए महिलाओं के लिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे ये डिजिटल डिटॉक्स क्या है, जिसे अपनाना जरूरी है, तो जानते हैं डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब है कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, लैपटॉप या अन्य डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना, स्वयं पर, परिवार पर और वास्तविक जीवन पर ध्यान देना। यदि महिलाओं के लिए डिजिटल डिटॉक्स के फायदे की बात करें तो इससे मानसिक तनाव कम होता है, क्योंकि महिलाएं लगातार सोशल मीडिया पर रहती हैं तो वो तुलना करती हैं, जिससे उनको चिंता बढ़ती है, मानसिक तनाव होता है, और इससे दूरी होती है तब मन शांत रहता है और संतुलित भी होता है। बेहतर नींद भी सहायक है, बेहतर नींद में भी ये सहायक है डिजिटल डिटॉक्स। लगातार मोबाइल के इस्तेमाल से नींद प्रभावित होती है, स्क्रीन से दूरी से बेहतर नींद आती है और आंखों को भी आराम मिलता है। सामाजिक लाभ की बात करें डिजिटल डिटॉक्स से, क्योंकि लगातार डिजिटल उपकरणों में व्यस्त रहने के कारण पारिवारिक संवाद कम हो जाता है, मित्र दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम हो जाता है, तो इससे उसमें भी दूरी आती है। और जब आप डिजिटल डिटॉक्स अपनाते हैं तो आपके रिश्तों में भी गुणवत्ता आती है, आप उनको समय दे पाते हैं, अवसर मिलने का आता है, जिससे आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसंतोष बढ़ाने में भी सहायक है डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाली आदर्श जीवन शैली से प्रभावित होने के बजाय महिलाएं अपनी उपलब्धियों पर, अपनी क्षमताओं पर ध्यान दे पाती हैं। डिजिटल डिटॉक्स अपनाने के सरल उपाय हैं। प्रतिदिन कुछ समय आप मोबाइल मुक्त रहें, भोजन के समय फोन का उपयोग न करें, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या स्क्रीन बंद कर दें, परिवार मित्रों या अपने शौक को समय दें, सप्ताह में 1 दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाने का प्रयास करें, तो आप ये जरूर अपना पाएंगे। तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका संतुलित उपयोग ही लाभदायक है। डिजिटल डिटॉक्स महिलाओं को मानसिक शांति, बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत पारिवारिक संबंध और आत्मविश्वास जगाता है। तकनीक का उपयोग करें, लेकिन तकनीक को अपने जीवन पर हावी न होने दें। समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं और जीवन के वास्तविक सुखों का आनंद लें। तो ये तो आपसे बात की डिजिटल डिटॉक्स की जो आवश्यकता है उस पर, और आपको ले चलते हैं फिर से गीत संगीत की ओर और सुनते हैं फिल्म माया से ये माधुर्यता से भरा गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज है, गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने, और ये गीत बेस्ड है राग मिश्र भैरवी और आसावरी पर, और इस गीत में जंपिंग नोट का बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना फिल्म माया से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने। और अभी हमारे पास थोड़ा सा समय बाकी है तो आपको देते हैं उपयोगी जानकारी। हमारी महिलाएं घर परिवार संभालने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। अनेक छोटी छोटी समस्याओं पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, नजरअंदाज करती रहती हैं और यही छोटी स्वास्थ्य समस्याएं आगे गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है नियमित स्वास्थ्य जांच कराना। समय समय पर जांच कराने से बीमारी बनने या गंभीर होने से पहले प्रारंभिक अवस्था में ही उसे उपचारित किया जा सकता है। नियमित जांच से महिलाओं को स्वास्थ्य सक्रिय जीवन जीने में मदद मिलती है। इससे समय समय पर शरीर में होने वाले बदलाव की जानकारी मिलती है और संभावित जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसका पता लगाया जा सकता है। कई गंभीर बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, एनीमिया, कैंसर जैसी बीमारियां जिनके शुरुआती स्तर पर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, नियमित स्वास्थ्य जांच से इनको शुरुआती स्तर पर ही

पहचानने में मदद मिलती है और रोकने में सहायक होती है। यानी समय पर पता लगाना, उपचार में आसानी और इससे बीमारियां होने पर होने वाले जो खर्च होते हैं उसमें भी कमी लाई जा सकती है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराने से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। स्वस्थ रहने से महिलाएं परिवार, कार्यक्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में बेहतर योगदान दे सकती हैं। अब सवाल आता है कौन कौन सी जांच कराएं? तो जो सामान्य जांचें हैं जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर जांच, रक्तचाप की जांच, थायराइड जांच, BMI, सर्वाइकल जांच, डॉक्टर की सलाह पर करा सकते हैं। उम्र की बात करें तो अब वर्तमान में स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए 18 से 30 वर्ष की उम्र के युवा भी साल में एक बार सामान्य जांच जरूर कराएं। 30 से 40 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो 6 माह या वर्ष में संपूर्ण स्वास्थ्य जांच जरूर कराएं। 40 वर्ष से अधिक उम्र है तो डॉक्टर्स हृदय और हड्डियों की जांच कराने की भी सलाह देते हैं। तो नियमित स्वास्थ्य जांच तो करानी ही है, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी रहना है, स्वस्थ रहने के उपाय भी अपनाने हैं। संतुलित और पौष्टिक भोजन लें, यानी सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाएं बल्कि भोजन में सभी जरूरी तत्व हों ये भी देखें। पर्याप्त नींद लें, नियमित रूप से योगा और व्यायाम करें, तनाव कम करने अपने शौक को समय दें, क्रिएटिव कामों में थोड़ा सा वक्त लगाएं और संगीत तो सुने ही, और ये तो हमारे आकाशवाणी से ऑल टाइम आपके लिए उपलब्ध है। कह सकते हैं स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार और समाज की नींव है। नियमित स्वास्थ्य जांच कोई अतिरिक्त खर्च नहीं बल्कि स्वास्थ्य पर किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश है। तो आप स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं और स्वस्थ रहें, तब आपका जीवन सुखद रहे, प्रसन्न रहें और आप स्वस्थ रहें। तो ये तो दी हमने आपको उपयोगी जानकारी और अब चलने का वक्त हो रहा, तो मिलते हैं फिर नए अंक के साथ। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। अनुमति दें गुड़िया तिवारी को। नमस्कार।

महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज और आकाशवाणी के ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे मेहरबान सिंह कुशवाहा के गाए चौकड़िया गीत।

मेहरबान सिंह कुशवाहा के गाए चुखड़िया लोकगीत अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे हरजिंदर सिंह तेजा के गाए भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की है।

0: हरजिंदर सिंह तेजा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत। आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजें हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: लड़की का कोई मॉडल पूरा ना लगता है,
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है तेरी कसम फिल्म से, आवाजें अमित कुमार के साथ लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत

0: टीवी कसम फिल्म का गीत अभी आपने सुना अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के लिए कृपया इंतजार कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल पटेल ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में जबलपुर के पास रानी दुर्गावती की समाधि स्थल नरईनाना में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा, बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाम भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना तथा जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी उपस्थित रहेंगे। अभियान के तहत आमजन, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के सदस्य आज भोपाल संभाग के दौरे पर हैं। आयोग नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सुझाव ले रहा है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयवान सिंह पवैया सहित वीआईपी सर्किट हाउस में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आयोग की टीम संभाग आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के साथ वृहद समीक्षात्मक बैठक भी करेगी। बैठक में निकायों की वित्तीय मजबूती, स्वच्छता, पेयजल और राजस्व स्रोतों में वृद्धि के उपायों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में रोजगार के क्षेत्र में सतत रूप से

भाईचारों की आवश्यकता है। प्रदेश में धार्मिक प्राकृतिक पुरा धरोहर से संबंधित पर्यटन क्षेत्र समृद्ध हैं। कल मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आवश्यक मार्गदर्शन के लिए गाइड की व्यवस्था को सशक्त बनाने और विभिन्न व्यंजनों का आनंद दिलवाने के लिए कार्य की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। युवाओं को बड़ी संख्या में इन कार्यों से रोजगार मिलेगा। कौशल विकास और रोजगार विभाग का पर्यटन विभाग से तालमेल स्थापित कर यह कार्य संभव है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस वर्ष चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम के नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा चानू युवा टीम की कप्तान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते प्रदेश में मानसून दाखिल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 42 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, भिंड और मुरैना सहित कई जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में उमरिया स्थित आश्रम परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम में 1100 पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। आगरमालवा के बड़ौद में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण शिविर में हितग्राहियों को मौके पर ही कृत्रिम अंग और कैलिपर्स वितरित किए गए। शिवपुरी में जिला प्रशासन ने कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी नियमों में लापरवाही बरतने पर 8 संस्थानों को सील कर दिया है। और गुना कलेक्टर के आदेश के मुताबिक आगामी 23 अगस्त तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी देर में आप सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को

0: देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबुधाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी

0: ने इस बात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।

हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हिमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हिमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हिमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुति कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में। गीत लिखा है रविंद्र रावल ने, संगीत राम लक्ष्मण का है। इस गीत को पसंद किया है बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सिंह, बारीलाल बढ़ई, मुन्ना खान एवं ग्राम पहरुआ से रामकुमार लोधी, गोविंद यादव और संजय पुरी। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और साथ ही साथ ये फरमाइश हमारे हाथ में है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अन्ना अनुष्का और तन्मय गजभिये की। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, राजा राम नगर देवास से ही ये फरमाइश है। राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, चीकू सानू, नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत और अभिषेक कुमावत के साथ ही साथ जो गीत इनकी पसंद पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसी के लिए फरमाइश हमें मिली है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मन।

ब्रांड तानिया, शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव, साथ ही साथ अमरपुरा पेंड्रा से ये हमारे श्रोता ने पत्र लिख भेजा है, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवली श्रीवास्तव ने, ये हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं। क्रिश फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत राजेश रोशन का है।

कमल प्यार है इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे, जिसकी बोल लिखी है इब्राहिम अश्क ने, संगीत राजेश रोशन का है और आवाजें बाबुल सुप्रियो और साथियों की है। इस गीत को सुनना चाहा है दैनिक राशि सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से ये हमारे श्रोता है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहा है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी और महादेव घाट अमलेश्वर से ये खत हमें भेजा है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में खुदा गवाह फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और पसंद हमारे इन श्रोताओं की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, पटेल नगर मलोट पंजाब से इस गीत को पसंद किया है डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया और बेबी आरजू जाजूरिया ने।

और कार्यक्रम के अंत में हमारे इन श्रोताओं की पसंद आप तक पहुंचाते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, भट्टा बजाज, साहिल और हुलासराम कटरे, नानेश्वरी कटरे, ये हमारे श्रोता हैं। करियागंड जिला बालाघाट से और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, इन्होंने सुनना चाहा है खुदगर्ज फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और सादा सरगम की आवाजों में। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: खुदगर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी, जिन्होंने संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरतापूर्ण संघर्ष में अपने प्राणों का बलिदान दिया। रानी दुर्गावती के समाधि स्थल जबलपुर के नरई नाला में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका शौर्य, अदम्य साहस और रणकौशल देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जो विशेष रूप से बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है और टी हब फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राज्य वित्त आयोग के सदस्य आज भोपाल संभाग के दौरे पर हैं। आयोग नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव ले रहा है। और हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, मीडिया में पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया में पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी शाम 5 बजे। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की होगी। संध्याकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। इस बीच शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। साथ 7:21 पर ग्राम सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की होगी। रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे चर्चा का विषय है। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नाटक हतक, जिसके लेखक है सआदत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। दस बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसमें आप सुनेंगे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन राग होगा यमन। ये थी जानकारी।

सांधिकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02:40 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त करते हैं। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 5 बजे हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: साथियों, आपने बिस्मिल अजीमाबादी का ये शेर तो जरूर सुना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: ये शेर बयां करता है इंकलाब की कहानी। इंकलाब जो परिचय है साहस, त्याग और बलिदान आदि वीर अभिव्यक्तियों का। इंकलाब जिसके खातिर लाखों हिंदुस्तानी एकजुट होकर विदेशी हुकूमतों के विरोध में खड़े होते रहे।
0: ऐसी ही अदम्य साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर करने की भावना का सजीव उदाहरण थी चंदेल राजवंश में जन्मी एक कन्या। कौन थी ये कन्या, जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के युववाणी कार्यक्रम में। मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ अभिदीप सुहाने और मेरे साथ है
1: विश्वास तिवारी।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: तो साथियों, सन 1524 में चंदेल राजवंश में एक कन्या का जन्म होता है। जैसे कि हमारे यहाँ कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, वैसा ही कुछ इस कन्या के साथ भी था। बचपन में ही समस्त राजवंश को ये समझ आ गया था कि उनके घर की लड़की कितनी साहसी, बुद्धिमान और युद्ध कौशल में निपुण है।
0: समय बीता तो कन्या भी किशोरी हो गई और तब राज परिवार ने बड़ी धूमधाम से उसका विवाह गोंडवाना नरेश दलपत शाह के साथ कर दिया। कुछ वक्त बाद जब दलपत शाह का निधन हो गया तो उस किशोरी ने अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में राज्य की बागडोर खुद हाथ में लेकर राज्य का कुशलता पूर्वक संचालन किया।
1: साथियों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं वीरांगना रानी दुर्गावती जी की। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की उन महान वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: साथियों, जब राज्य की बागडोर रानी दुर्गावती ने संभाली तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रजा के कल्याण, सिंचाई, कृषि और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जिससे राज्य समृद्ध बन सके। रानी स्वयं को शासक नहीं बल्कि प्रजा की संरक्षिका मानती थी। यही कारण था कि जनता का उन पर अटूट विश्वास था।
1: आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि रानी दुर्गावती स्वयं सेना का नेतृत्व करती थीं और घुड़सवारी, धनुर्विद्या तथा शस्त्र संचालन में भी दक्ष थीं। इस सब का कारण था उनकी परवरिश, क्योंकि बचपन से ही बेसाहसी व बुद्धिमान तो थी ही, साथ ही उन्हें युद्ध कला में भी रुचि थी। तो उन्होंने बचपन में ही घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध नीति का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था।
0: 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार की चरम पर था और गोंडवाना की समृद्धि एवं रणनीतिक की स्थिति ने उसे

0: यानी गोंडवाना को मुगलों का लक्ष्य बना दिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण करने सन 1564 में ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान को भेजा।
1: इस युद्ध में संसाधनों और सेना में कमजोर होने के बावजूद भी रानी ने संघर्ष मार्ग चुना। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ आसफ खान की विशाल मुगल सेना का वीरतापूर्वक सामना किया और शुरुआत में मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
0: हालांकि अंत में जबलपुर के नर्राई नाले के पास हुए भीषण युद्ध में घायल होने के बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया। उनके लिए स्वतंत्रता और सम्मान जीवन से अधिक मूल्यवान थे, इसलिए उन्होंने दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने के बजाय खुद को खंजर मारकर आत्मोत्सर्ग यानी बलिदान चुन लिया।
1: 24 जून 1564 को उन्होंने वीरगति प्राप्त की, लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की। यही उन्हें भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से एक स्थान दिलाता है और साथ ही उनका जीवन हम युवाओं को विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और कार्यनिष्ठा बनाए रखने की प्रेरणा देता है।
0: आज उनके बलिदान दिवस पर

0: वीर गति प्राप्त की, लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की। यही उन्हें भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से एक स्थान दिलाता है और साथ ही उनका जीवन हम युवाओं को विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और कार्यनिष्ठा बनाए रखने की प्रेरणा देता है।
1: आज उनके बलिदान दिवस पर हम उनके जीवन और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन करते हैं। साथियों, अभी आप सुन रहे थे वीरांगना दुर्गावती बलिदान दिवस पर ये महत्वपूर्ण चर्चा कार्यक्रम में। अब लेते हैं छोटा सा अंतराल और अंतराल के बाद आपको ले चलेंगे हमारी आज की दूसरी चर्चा की ओर।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: साथियों, अंतराल के बाद पुनः स्वागत है।
1: आइए अब आपको मनोरंजन के लिए सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म न्यूयॉर्क का ये प्यारा सा गीत। आवाज थी सुनिधि चौहान की और संदीप श्रीवास्तव के बोलों को संगीत में पिरोया था प्रीतम ने।
1: आइए अब ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की अगली चर्चा की ओर।
0: साथियों, कल्पना कीजिए कि किसी परिवार का मुखिया गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए और इलाज का खर्च लाखों रुपए तक पहुंच जाए। ऐसे में कई परिवारों को अपनी जमीन, गहने या जीवन भर की जमा पूंजी तक बेचनी पड़ जाती है। स्वास्थ्य संबंधी यही आर्थिक कठिनाइयां देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने लंबे समय से चुनौती बनी हुई थी।
1: इसी चुनौती का समाधान खोजने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2018 में एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। यह योजना देश के करोड़ों परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई थी।
0: साथियों, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को केवल पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। इसी सोच के साथ इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक माना जाता है।
1: इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
0: आपको बता दें साथियों कि इस योजना का लाभ परिवार के सभी पात्र सदस्यों को मिलता है, जिसमें आयु, लिंग या सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
1: साथियों, आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से दो स्तंभों पर आधारित है। पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
0: और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके माध्यम से अस्पतालों में भर्ती होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
1: इस योजना की एक बड़ी विशेषता यह है कि लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकता है।
0: आयुष्मान कार्ड इस योजना का महत्वपूर्ण माध्यम है। साथियों, पात्र व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर आसानी से योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
1: साथियों, हृदय रोग, कैंसर, किडनी संबंधी समस्याएं, दुर्घटना उपचार तथा अनेक गंभीर बीमारियों के उपचार को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
0: स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ ये योजना सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करती है। जब परिवार इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त होता है, तब वो शिक्षा, रोजगार और जीवन की अन्य आवश्यकताओं पर बेहतर ध्यान दे सकता है।
1: साथियों, हम युवाओं के लिए यह योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी रखना और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।
0: साथियों, विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो। आयुष्मान भारत योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने का प्रयास कर रही है।
1: साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि

0: स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। एक स्वस्थ नागरिक ही एक सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
1: तो साथियों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की दूसरी चर्चा विषय आयुष्मान भारत योजना पर। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवा देते हैं मनोरंजन के लिए ये प्यारा सा गीत।
2: Flop song.

mamá. Porque mamá no te entiende. Only English, huh?

0: साथ ही अभी आपने सुना फिल्म 3 से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी धनुष की।
1: गीतकार थे धनुष, जिनके बोलों को संगीत में पिरोया था अनिरुद्ध रविचंद्र ने। आइए साथियों, कार्यक्रम में अब लेते हैं छोटा सा अंतराल, और अंतराल के बाद ले चलेंगे आप सभी को आपके पसंदीदा कार्यक्रम कॉफी हाउस की ओर।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: साथियों, पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। अब आपको ले चलते हैं कॉफी हाउस की ओर, जिसमें आलेख है खुशी खान का और प्रतिभागी हैं अभिषेक मिश्रा, शिवांशु प्रजापति, राधिका वाजपेयी और महिमा दीप पटेल।

0: हाय निशा, हेलो नेहा।
1: हाय प्रदीप, हेलो राहुल। आइए आइए बैठिए।
0: थैंक यू थैंक यू।
2: क्या बात है प्रदीप, आज फिर आप दोनों एक साथ। लगता है याराना अभी भी चल रहा है।
3: ये बचपन की दोस्ती है, ऐसे नहीं टूटती है।
4: हाँ, और वैसे भी पिछली बार किसी ने बहुत कोशिश की थी कि ये दोस्ती टूट जाए।
3: लेकिन उसकी नज़र हमारी दोस्ती को लग नहीं पाई। देखो ना, हम आज भी दोस्त हैं।

0: ओ हेलो हेलो, यहाँ किसी ने कोशिश नहीं की थी तुम लोगों की दोस्ती तोड़ने की, समझे?
1: और आपकी दोस्ती है ही इतनी कमजोर कि निशा ने थोड़ा सा झटका दिया और आपकी दोस्ती की हवा निकल गई। फुस।
2: ओ हेलो, ज्यादा खुश फहमी मत पालो। ये दोस्ती जो है ना हमारी, वो प्यार के बंधन से बंधी हुई है।
3: कोई कितना भी इम्तिहान ले ले, ये दोस्ती नहीं टूटेगी।
1: बस बस, दोस्ती के बड़े बड़े दावे रहने ही दीजिए आप लोग।
0: हाँ, पिछली बार सबने देखा है कि एक शरारत से आपकी दोस्ती का गुब्बारा फूट गया था। कैसे कैसे नेहा?
1: फटाक से। वैसे एक बात कहूँ, वो दोस्ती ही क्या जिसे इम्तिहान से न गुजरना पड़े।
0: नेहा, ये स्वार्थ की दोस्ती है, ऐसी ही होती है।
1: सही पकड़े हैं।
0: अच्छा ये सब छोड़ो, राहुल ये लो, मुंह मीठा करो।
2: अच्छा ये मिठाई किस खुशी में?
0: अरे तुम मुंह तो मीठा करो। नेहा ये लो, मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ, ये लो।
1: थैंक यू निशा।
0: वेलकम नेहा।
3: निशा जी, मेरा मुंह भी खुला हुआ है, मिठाई का इंतजार कर रहा है।
0: हाँ तो ये लो, इस डब्बे से एक पीस उठा लो और खा लो।
3: अरे अपने हाथों से ही खिला दीजिए ना, मिठाई और भी मीठी हो जाएगी।
0: प्रदीप, ज्यादा मिठाई खाना ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, शुगर हो जाएगी।
1: हाँ और फिर शुगर हो गई तो शरीर कमजोर हो जाएगा, गाल पिचक जाएंगे और आंखें धस जाएंगी, फिर पता है सब लोग आपको देखकर क्या कहेंगे।
0: हाँ सब यही कहेंगे, बुढ़ा प्रदीप बुढ़ा प्रदीप।
2: सच्ची यार, तुम दोनों बहुत खराब हो, क्यों इस बेचारे प्रदीप को परेशान करते रहते हो।
1: अब क्या करें, प्रदीप को सताने में मजा ही बड़ा आता है।
0: हाँ यार, दिल खुश हो जाता है।
3: चलिए, मेरे परेशान होने से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो अच्छा है ना, मैं किसी के काम तो आया।
2: वाह प्रदीप, क्या डायलॉग है यार। वैसे निशा आप तो बता दो यार कि ये मिठाई किस खुशी में थी।
0: अरे कल मेरा बर्थडे था, बस इसी खुशी में मैंने आप सभी का मुंह मीठा करा दिया।
2: ओ सिट यार, मैं कैसे भूल गया तुम्हारा बर्थडे। पता नहीं आजकल ये क्या हो रहा है, ये कैसे मेरे दिमाग से बात निकल गई। सॉरी यार निशा।
0: नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं।
1: मैंने तो रात 12 बजे ही निशा को विश कर दिया था।
0: अब वो क्या है ना नेहा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और सच्चे दोस्त ही एक दूसरे की खुशियों को याद रखते हैं।
1: सो तो है।
3: क्या करूं, मुझे तो जन्मदिन वगैरह कुछ याद ही नहीं रहते, मैं तो खुद का ही बर्थडे भूल जाता हूँ।
1: होता है प्रदीप, होता है, बढ़ती उम्र के साथ अक्सर मेमोरी लॉस होने लगती है।
0: हाँ यही तो बुढ़ापे की निशानी है। पता है राहुल, ये बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा। मेरी दादी जी ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया, दादाजी ने मुझे एक खूबसूरत सी ड्रेस गिफ्ट की है।
1: ये वही है ना?
0: हाँ ये वही ड्रेस है।
1: वाओ ये तो बहुत सुंदर है।
0: थैंक यू नेहा। और पता है, मम्मी पापा से भी ज्यादा मेरे जन्मदिन का उत्साह मेरे दादाजी और दादी जी में था।
3: हाँ वो कहते हैं ना, मूल से सूद ज्यादा प्रिय होता है।

0: पर स्कूल बैग अच्छे लगते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा, अगर हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा।
0: और अगर कहीं कोई बच्चा मजदूरी करता दिखे तो हमें उसके परिवार को शिक्षा के महत्व के बारे में बताना चाहिए।
2: सही कहा निशा, बाल श्रम रोकना केवल सरकार का नहीं हम सबका कर्तव्य है।
1: बहुत से ऐसे माफिया हैं जो बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं।
3: हाँ, बच्चों को मजदूरी भी कम देनी पड़ती है और विरोध भी नहीं होता है।
2: इसी नेटवर्क को तो हमें तोड़ना है, इनका पर्दाफाश करना है।
0: हाँ प्रदीप, ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, इनका विरोध इतना आसान नहीं है।
1: ये कितने भी शक्तिशाली और ताकतवर हो जाएं, लेकिन याद रखना कि कानून से बड़ा कोई नहीं है।
3: बिल्कुल राहुल, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे लोगों का वीडियो बनाकर वायरल करने से कुछ ही समय में लाखों लोगों तक संदेश पहुंच जाता है।
2: हाँ ये बात तो सही है, सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत अधिक है।
1: हाँ, इसी की शक्ति का फायदा उठाकर हम समस्या के प्रति लोगों का ध्यान और ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं।
3: जी हाँ, सोशल मीडिया ने कई समस्याओं को उजागर किया है और उनका समाधान भी निकाला है।
0: पता है इसी 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाएगा।
3: जी हाँ, सबसे पहले वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी।
0: हाँ, ताकि ये बताया जा सके कि सोशल मीडिया ने दुनिया भर के लोगों को जोड़ने, संवाद स्थापित करने और सूचनाओं के आदान प्रदान में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: शिक्षा, व्यापार, समाचार, मनोरंजन और सामाजिक अभियानों में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है।
2: हाँ, बट कुछ लोग सोशल मीडिया पर रील बनाने में ही मस्त हैं। क्यों निशा, मैंने ठीक कहा ना?
0: मैं तो रील नहीं बनाती। हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले तुम्हारी एक रील जरूर देखी थी।
3: हाँ, एक शादी में आप डांस कर रहे थे। डांस क्या, घोड़े जैसे उचक रहे थे।
0: हाँ, समझ ही नहीं आ रहा था कि घोड़ा उचक रहा है या गधा, I mean, आप ही उचक रहे थे।
2: बैड जोक।
0: अरे तुम तो बुरा मान गए, हम तो तुम्हें एक सलाह दे रहे थे, सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक चीजों में किया करो, समझे?
1: सकारात्मक उपयोग।
3: क्या हुआ राहुल, हंस क्यों रहे हो?
1: एक बार मैंने सोशल मीडिया पर कुछ योगासन देखे और बस उन्हें करने के लिए ट्राई ही किया कि एक आसन करते समय मेरे दोनों पैर गर्दन में ऐसे उलझे कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेढक जैसी पोजीशन बन गई थी, बस ठर ठर की आवाज निकलना ही बाकी था।
2: मिस्टर राहुल, एकदम से हट योगा नहीं किए जाते, पहले सरल योगासन से शुरुआत की जाती है।
0: हाँ, व्यायाम एक शारीरिक कसरत है जबकि योगासन एक आध्यात्मिक क्रिया है।
2: योग करने से तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं।
3: हाँ, योग का मतलब होता है जोड़ना, अपने अंदर अच्छी आदतों को जोड़ना और गलत आदतों को बाहर निकालना ही योग है।
2: बिल्कुल सही बात है, जब हम ध्यान लगाते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी क्रिया करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा मैंने सुना है।
1: बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं रोज सूर्य नमस्कार के सभी 12 आसन करता हूँ, इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है।
0: पता है राहुल, योग भारतीय ऋषि मुनियों की सबसे बड़ी खोज है, आज सारी दुनिया योगासन के प्रति जागरूक हो रही है।
2: देश विदेश में योग का महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
3: जी हाँ, इसीलिए तो प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो योग करने की आदत तो बनानी होगी, ज्यादा नहीं, बस सुबह आधे घंटे योग करने से हम दिन भर शरीर में स्फूर्त बने रह सकते हैं।
2: योग का महत्व तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं? देर से सोना और देर से जागना मेरी आदत बन गई है, अब योगा करूं भी तो कैसे, सुबह नींद ही नहीं खुलती है।
0: प्रदीप, मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, इंसान बन जाओ, जल्दी सो और जल्दी जागो।
3: वैसे भी रात में जागने वाले और दिन में सोने वाले को क्या कहते हैं पता है?
0: हाँ, कक्षा 1 की किताब में पढ़ा तो था, छोटा आ से अनार, बड़े आ से आम और छोटा ऊ से उल्लू।
2: आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है।
0: सॉरी, मजाक कर रही थी। अच्छा बोलो, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए क्या ऑर्डर करूं?
2: मुझे कुछ नहीं खाना पीना।
3: ठीक है, प्रदीप को कुछ नहीं खाना, प्रदीप के लिए ऑर्डर मत करिए, रसमलाई और आइसक्रीम ऑर्डर कर लेते हैं। राहुल, आप तो खाएंगे ना?
1: हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं खाऊंगा, आइसक्रीम और रसमलाई तो मैं जरूर खाऊंगा।
2: ठीक है, मैं भी खा लूंगा।
0: वेटर, 3 आइसक्रीम लाना और हाँ, साउंड का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देना।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत था यार ये, मेरा तो सुनकर मन ही खुश हो गया।
1: हाँ, ईश्वर के प्रति समर्पित एकदम मधुर गीत था। इस गीत के शब्द कितने प्यारे थे।
2: ईश्वर के प्रति त्याग और समर्पण का पर्व मुहर्रम भी तो इसी माह है।
1: मैं कुछ समझी नहीं।
2: मुहर्रम इस्लामिक वर्ष का प्रथम माह है। ये हजरत इमाम हुसैन अलैह सलाम की शहादत की याद में मनाया जाने वाला एक मातम का पर्व है।
3: थोड़ा विस्तार से बताइए ना प्रदीप, इस बारे में मेरी जानकारी कुछ ज्यादा नहीं है।
2: डोंट वरी, मैं हूँ ना इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैह वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैह सलाम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर धर्म की शिक्षा और उपदेशों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से दमिश्क का बादशाह यजीद ईर्ष्या रखने लगा था।
0: अच्छा, तो फिर क्या हुआ।
2: फिर क्या, बादशाह यजीद ने षड्यंत्र रचते हुए इमाम हुसैन अलैहि सलाम को संदेश भेजा कि वह उनसे दीक्षा लेना चाहता है और उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया। इस धोखे से बेखबर इमाम हुसैन अलैहि सलाम अपने परिवार के साथ बादशाह यजीद के राज्य में पहुंच गए। उनके काफिले में कुल 72 लोग थे, जिसमें मासूम बच्चों से लेकर औरतें भी शामिल थीं।
1: फिर क्या हुआ।
2: फिर क्या, बादशाह यजीद की सेना ने उन्हें घेर लिया और खाना पानी लेने पर रोक लगा दी थी।
0: ओह माय गॉड, एक तो धोखा।

0: ऊपर से खाने पीने पर रोक लगा देना, यह तो बहुत गलत है यार।
1: सही मार्ग पर चलने में दिक्कत तो बहुत आती है, पर ईश्वर के सच्चे भक्त रास्ता नहीं बदलते हैं।
2: बिल्कुल नेहा, बादशाह यजीद ने संदेश भेजा कि या तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लो या युद्ध के लिए तैयार रहो।
3: ये तो बहुत ही जालिम बादशाह था।
2: हाँ, लेकिन इमाम हुसैन अलैह सलाम इस जुल्म के आगे नहीं झुके। उन्होंने साफ कह दिया कि यह अल्लाह के अलावा किसी और के आगे नहीं झुक सकता।
0: लेकिन ये युद्ध तो एक तरफा ही रहा होगा, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन अलैह सलाम धर्म की दीक्षा देने गए थे और युद्ध करने तो गए नहीं थे।
2: बिल्कुल, ये युद्ध एक तरफा ही था। कहां मासूम बच्चों औरतों सहित कुल 72 साथी और दूसरी तरफ हजारों की सेना, लेकिन सभी ने डटकर मुकाबला किया। भूखे प्यासे रहकर भी हार नहीं मानी। धीरे धीरे सभी लोग शहीद होते गए। मुहर्रम माह की 10 तारीख को जब हजरत इमाम हुसैन अलैह सलाम नमाज पढ़ने के लिए सजदे में झुके हुए थे, तभी यजीद के सैनिकों ने तलवार से उनकी गर्दन अलग कर दी थी।
0: ओ गॉड, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है।
3: ईश्वर ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है निशा, आज यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं है और हजरत इमाम हुसैन अलैह सलाम करोड़ों लोगों के दिल में हैं। बस इसी शहादत की याद में मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है।
0: जी हाँ, मुहर्रम का यह पर्व हमें संदेश देता है कि अन्याय और अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म के मार्ग से हमें कभी नहीं हटना चाहिए।
1: न्याय और सत्य के लिए यदि प्राण देना पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए।
2: बिल्कुल, किसी ने क्या खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
1: आपस में चर्चा करने से बहुत सारी जानकारी मिलती है।
3: हाँ सही कहा नेहा, मुझे मुहर्रम के बारे में ज्यादा कुछ विशेष पता ही नहीं था।
2: अरे मेरी संगत में रहोगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
4: जी यानी बाबा, आपका ज्ञान हमें यूं ही मिलता रहे।
2: तथास्तु।
0: अच्छा देखो, समय काफी हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए।
2: अरे ठहरो ठहरो, मैं भी साथ चलता हूँ।
0: बाय नेहा, बाय निशा,
4: बाय बाय राहुल, बाय प्रदीप।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम कॉफी हाउस। आलेख था खुशी खान का, प्रतिभागी थे नेहा की भूमिका में राधिका वाजपेयी, निशा की भूमिका में महिमादी पटेल, राहुल की भूमिका में अभिषेक मिश्रा और प्रदीप की भूमिका में शिवांशु प्रजापति। आइए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको दे देते हैं रोजगार सूचना।
1: साथियों, RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
0: पद का नाम है टेक्नीशियन, ग्रेड 1 और 3।
1: पदों की संख्या है 6,565।
0: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
1: आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 30 जून 2026 और अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026।
0: शैक्षणिक योग्यता BE, BTEC, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होना चाहिए।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर विजिट करें।
0: साथियों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारा अब आपसे विदा लेने का। मैं जुड़ा हुआ था आपके साथ अभिदीप सुहाने और मेरे साथ थे
1: विश्वास तिवारी।
0: अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

भी युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रिया।

प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। 6:30 पर लोकधारा के कलाकार होंगे राहुल अनुरागी। 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे धारावाहिक चिट्ठियां देवर भौजाई की। वाचन होगा साहब सिंह सेंगर का और प्रस्तुति होगी शंभुदयाल अहिरवार की। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात 10 बजे सुनिए श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आदि वीर अभिव्यक्त

कल हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत सुनिए बाला प्रसाद यादव से बुंदेली काव्य पाठ। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

8:30 पर सुनिए भोपाल से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे शरद अनुरागी। 9:30 पर एक ही गायक क्रम में आप सुनेंगे सुनिधि चौहान के गाए कुछ फिल्मी गीत। 10:05 पर सुनिए सबरंग कार्यक्रम में हरियाणवी लोकगीत गुलाब सिंह से, और 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

हमारी संध्याकालीन सभा में युवा श्रोता सुने शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। 6 बजे आप सुनेंगे भोपाल से अनुप्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम के कलाकार होंगे मोहनलाल कुशवाहा। 7:20 पर सुने ग्रामीण भाई ग्राम सभा कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे जनोपयोगी चर्चाओं और लोकगीतों पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही सुने आप एक भेंट वार्ता, इसमें सुनिए स्वरोजगार से जुड़े और शासन की योजना के लाभार्थी राकेश प्रजापति से बातचीत।

रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात 10 बजे सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे श्रोताओं के आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस विशेष अभियान का मुख्य नारा रुके सोचें फिर क्लिक करें रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने साइबर जागरूकता बुकलेट और वीडियो का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने साइबर जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोकभवन में जनजातीय विकास कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन मुख्यतः तकनीकी विषय है, इसलिए हितग्राहियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर के नरई नाला में उनकी समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती का स्मरण करते हुए कहा कि प्रदेशवासी रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव याद रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित की जाएगी। समिट में 3 विशेष सत्र होंगे। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन भाई और मोतीम भाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और W सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं

स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदे टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे

0: यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपने कर्मस्थली के रूप में चुना।

0: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
3: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधि भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
3: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुँचे और वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से मिले।
4: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेन्द्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
4: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
4: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें।

0: Jeliti.
1: Ji, avashya.
2: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
4: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी,
2: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
4: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
4: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब

0: जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सबहें नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं, और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, यह आकाशवाणी
6: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोकधारा कार्यक्रम। आइए इसके आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं राहुल अनुरागी के स्वर में गारी।

0: अभी आपने राहुल अनुरागी के स्वर में गारी सुनी।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: और अब हम आपको सुनवाते हैं राहुल अनुरागी के स्वर में कजरी।

0: वासांसि जीर्णानि यथा विहाय।
1: अरे कब से तुम गीता पढ़ने लगे? क्या गीता ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हो रही है?
0: हाँ हाँ सही समझी, विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन की शाखा है हमारे ललितपुर में, वहीं से तैयारी कर रहा हूँ।
1: अच्छा, वो प्रगति विद्या मंदिर के पीछे नई बस्ती में जो स्वाध्याय मंडल है?
0: हाँ हाँ वही, उसके संचालक है श्री सर्वदेव तिवारी। मोबाइल नंबर है
1: 8858920259।
0: 8858920259।
2: और अब सुनवाते हैं हम

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: इस ब्रेक से पहले आपने विवाहगारी सुनी थी और लीजिए अब सुनिए चेतावनी। स्वर एक बार फिर राहुल अनुरागी का है।

0: अभी आपने चेतावनी सुनी।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
2: अरे?
1: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं राहुल अनुरागी के स्वर में धुवियाई।

अभी आपने राहुल अनुरागी के स्वर में धुवियाई सुनी और लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं राहुल अनुरागी के स्वर में लेत। ढोलक पर अशोक विश्वकर्मा, झींका पर प्रेम कुमार सोनी और बेंजो पर जब्बार खान ने संगत की है।

इसी के साथ लोकधारा कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडिया वेब और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए हम आपको दे दें गुमशुदा के संबंध में सूचना। ये सूचना आपको दी जाती है श्रीमती नीलम के संबंध में। ये दिनांक 26 मई 2026 समय 10 बजे से अपने घर वृहद ग्राम मदनी

पुरसे लापता हैं। आयु है 28 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट, शरीर की बनावट दोहरा, रंग साफ, चेहरा गोल, इनकी आंखें कंजी हैं, लंबे बाल हैं। उन्होंने घटना के समय साड़ी ब्लाउज पहना हुआ था। यदि किसी को इनके संबंध में कोई सूचना मिलती है तो वो इस पते पर सूचित कर सकते हैं। पता है महेंद्र सिंह, तनय कन्हैया लाल, निवासी मदनीपुर, थाना गोहन, जिला जालौन। एक सूचना और आपको हम गुमशुदा के संबंध में देते हैं। इनका नाम है रश्मि परिहार, आयु है 20 वर्ष। ये दिनांक 30/5/2026 को सुबह घर ग्राम धनमौली

यदि किसी को इनके संबंध में कोई सूचना मिलती है तो वो इस पते पर सूचित कर सकते हैं। पता है महेंद्र सिंह, तनय कन्हैयालाल, निवासी मदनीपुर, थाना गोहन, जिला जालौन। एक सूचना और आपको हम गुमशुदा के संबंध में देते हैं। इनका नाम है रश्मि परिहार, आयु है 20 वर्ष। ये दिनांक 30/5/2026 को सुबह घर ग्राम धनमौली से लापता है, धनतौली से लापता है। ऊंचाई है 5 फीट 2 इंच। एकहरा मजबूत बदन, रंग सांवला, चेहरा लंबा, आंखें गोल काली, बाल काले लंबे। इन्होंने घटना के समय लाल साड़ी, लाल ब्लाउज और पैरों में चप्पल पहनी हुई थी।

या श्यामलाल उनकी बिटिया को ब्याह कैसो भाओ के नहीं, अगली चिट्ठी हमें जरूर लिख दियो। अरे हाँ, सुनत के बाल विवाह करवो एक समाज कुरीति है, वो ही श्यामलाल के संग भाओ। बिटिया हती 17 साल की और बताऊं लगे 18 की। और भौजी जब जांच परख भई तो सब कड़िया ही पोल। अरे का जल्दी मची मानुस खा, जब बिटिया खुद समझन लगे कि ब्याह होवे के बाद शरीर में कमजोरी रही तो फिर का हुए, फिर का हुए, फिर जल्दी जल्दी बाल बच्चे होने लगा, सो बिटिया को विकास नहीं हो पाऊ। और जहां विकास ना भाओ सो शरीर में अनेक प्रकार के रोगन को घर बन जाते है कि नहीं भौजी। इसे बड़े सोच समझ के चार जनन से सलाह लेके ब्याह करो चाहिए, करो चाहिए कि नहीं। अब को कात कि बिटिया जितने जल्दी पराए घर की होवे सो अच्छो। अरे आहा, अरे उगे बचाओ, उगे पढ़ाओ लिखाओ। इसे कहोगे कि बिटिया को सोच समझ के

को खर्चा बिल्कुल माफ कर दो। अरे तुम्हें पतो नहीं है वह रामलाल की मोड़ी नहीं हती ललता, ऐसो ही तो उके संग भाव का मिलो। सब घर भर जेल चले गए। काऊ की जान ले वो आसाना है, बड़ो अपराध है। कभू कभू का होत दिखात कछु और है, होत कछु और है। बिटिया बेचारी ससरार में दुख झेलत रात और अपने बाप मताई का कछु नहीं बताऊ। वही को प्रणाम जो होत के बाद में परेशानी पड़त। अरे जान है तो जहान है, बिटिया अगर पढ़ी लिखी हुई है तो बा अपनो अच्छो और खराब दो ही समझ पाए, अपनो जीवन स्वयं संभाल ले है कि नहीं भोजी। तो हमारी समझ से तो बेटी का पढ़ाओ चाहिए, पढ़े लिखे से होशियार बनत, समझदार बनत। जब कोनो बुरा समय आए तो अपने बारे में अपने ऊपर न्याय अन्याय को हिसाब बेटी लगा ले। भोजी हमने शहर में कई औरतें देखी कि वे बेरोजगार पति को संग निभा रही, उनके कदम से कदम मिला के चल रही, आगे बढ़ रही और अपने परिवार का आगे बढ़ा रही। तो यही से कही गई कि अगर माँ पढ़ी लिखी हुई है, बाल बच्चन का भी पढ़ा है लिखा है, गुणवान बना ले है, और कहूं गैर पढ़ी लिखी भाई तो वैसे ही भी लड़का बन जाए। देखो तो जो गो कि पढ़े लिखे आदमी की संतान भी कछु करके दिखाओ, कछु जने बिटिया और लड़कन में भेद कर दो जी। लड़का खां तो अच्छी शिक्षा दबाओ, बेटी खां सो बस जोन गांव में जान लो स्कूल है उतनी पढ़ाई हो गई। अरे भौजी अब वो समय निकल गो जब गांवों में करीब करीब अनपढ़ जने रहते, अब तो शिक्षा को स्तर बिलात अच्छो हो गो। सरकार सोई ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही लड़कियों पे। आजकल नई पीढ़ी के बालक बालिका समान अधिकार चाहत, और अब की साल का हमेशा से बिटियन ने आगे विकास करके दिखाओ। जब विकास रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, नर और नारी है कि नहीं, एक पहिया क्यों खराब भाव तो दूसरो पहिया का करे बेचारो। गाड़ी एक पहिया के भरोसे कैसे धड़क पे अकेली, और कहूं अगर दो पहिया समझदार हुनरदार होशियार होंगे तो फिर देखो विकास को सर्राटो हुए सर्राटो। जोन मताई ने बेटी का जन्म दो बे उके संग भेदभाव करन लगती। मताई कात कि जब दूसरे ही घरे बिटिया खा जाने तो फिर ज्यादा पैसा काय खो खर्च करें अकेले। हाँ भौजी जोन दुर्व्यवहार बेटी के संग करो जात वो तो सरासर गलत नहीं है। पढ़ावे लिखावे पालवे में

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक कुंडलिया सुई याद आ रही। कहो तो लिख दे कई याद कि बेटी बेटन से भाई आगे करो विचार, कहां से कहां अब पहुंच गई, अब नैया लाचार, अब नैया लाचार पुरुष के कदम से कदम मिला रही, हर हालत को करें सामनो बढ़के आज दिखा रही, इनको संग सहारो बनके देके जन्म बचाओ, जीवन रूपी जंग जीते हैं, जानो पढ़े पढ़ाओ, जानो पढ़े पढ़ाओ। भौजी अब हम चिट्ठिया लिखो कर रहे बंद, तुम हमारी चिट्ठिया के पढ़ते नहीं, चिट्ठिया डाल दियो, जो हमारी पहली चिट्ठिया है हमें उत्तर चाहने, हमने शहर के वातावरण की बातें लिखी, तुम सोई घोर घोर के लिखियो, जो उन काम की बातें हुए बाकी सब ठीक है, ज्यादा का लिखें थोड़ी में ज्यादा समझियो। भौजी राम राम, तुम आओ देवर।

0: अबे अपने भैया बहन सुन रहे थे चिठिया देवर भौजाई की ई को भाग दो। वाचन हतो साहब सिंह सेंगाजू को और प्रस्तुति हती समुदयाल अहरबाजू की और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आधारित हतो। और अब अपने भैया बहन का सुनवा रहे हैं बुंदेली काव्य पाठ राम नरेश नायक जू से। तो अपने भैया बहन सुनो।
1: हाँ भैया बहनों, राष्ट्रभक्ति के कुछ समसामयिक कुंडलियां प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें आप ध्यान से सुनो। कितनी प्यारी भूमि जा माता श्री सुखदेत, जाको कर कर रम अति चित जग को हर लेत, चित जग को हर लेत जिते की मधुबा बानी, चित जग को हर लेत जिते की मनवा बानी, सहज स्वर्ग बलिहार लखे ऋतुवन की रानी, सहज स्वर्ग बलिहार लखे ऋतुवन की रानी, हम सब इसके लाल करें निस्तर रखवारी, हम सब इसके लाल करें निस्तर रखवारी, नायक धूरा लोट कहे माँ कितनी प्यारी, माली सबको एक है, ये राष्ट्रभक्ति की है, माली सबको एक है, हम सब कुसुम अनेक,

0: सब प्रभु के संतान, करने जिसकी विमल है उसका ही सम्मान, करने जिसकी विमल है उसका ही सम्मान। माता के चरण रहत सारे तीर्थ धाम, माता के चरण रहत सारे तीर्थ धाम, नायक जगपत भी करत जननी को प्रणाम, नायक जगपत भी करत जननी को प्रणाम। शेर सिवा इतिहास में हुए अमर विख्यात, शेर सिवा इतिहास में हुए अमर विख्यात, जननी जीजाबाई की थी सब सुन सौगात, जननी जीजाबाई की थी सब अच्छ सौगात। रानी कुंवर गणेश जू राजा मत कर साह, रानी कुंवर गणेश जू राजा मत कर साह, भक्ति बार निधि उर रहा जिनका विमल अथा है, भक्ति बार निधि उर रहा जिनका विमल अथा है।
1: अब अपने भैया बहन सुन रहे थे जो बुंदेली काव्य पाठ। ईखो कह रहे थे राम नरेश नायक जू, और भैया बहन हरो देखो अब सुनवा रहे हैं अपने भैया बहन को एक साक्षात लोकगीत राजू पटेल व साथियों को गाओ भाव।

और भैया बहनों जो तो है तो देखो साक्षात आलोक की जीखों गा रहे थे भैया राजू पटेल व साथी। और भैया बहनों देखो बात कर रहे हैं आज की सीख की, तो सीख को विषय है जहां धुआं वहां आग। जहां एक बुंदेली कहावत है जी को अर्थ है कि बिना कारण के कोई भी काम नहीं होता यार। अगर कोनो अफवाह फैल रही है तो देखो कोनो बात सामने आ रही है तो उनके पीछे कोनो न कोनो सच्चाई जरूर छिपी है। यही समझा अपने बुंदेलखंड में कहावत कही जात है कि जहां धुआं वहां आग। इससे स्पष्ट हो जात कि जितने धुआं हो रहा हो उतने आग अवश्य लगी है। और भैया बहन देखो हो रही है चलवे की बेरा, सो बता दें कल की ग्राम सभा के कार्यक्रम। कल अपने भैया बहन सुनहे सुनो गीत गुनो बतकाओ और भेंट वार्ता सुनहे अपन स्वरोजगार से जुड़े शासन की योजनाओं के लाभार्थी राकेश प्रजापति जी से बातचीत। आज की सीख हुई है जोलो उपटा नहीं लगत नीचे नहीं देखत, और अपना तपनो बतका हुई है मनोरंजन हुई है जब तक अपनी बहन नंदिनी को देव आज्ञा। भैया बहन हरो राम राम।

0: अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक संकट पर केंद्रित 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
3: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक और आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियों पर। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं

0: जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी जो कि पूर्व राजदूत हैं। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई और ब्रिक्स के जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच में कैसे सहयोग बढ़ाया जाए और खास तौर से जो सुरक्षा के मसले हैं, जिस तरह से वैश्विक स्थितियां बदल रही हैं आज के जमाने में, ऐसे हर राष्ट्र के सामने सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, तो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उनके बीच में किस तरह से सहयोग बढ़ाया जाए जिससे कि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का सामना किया जा सके और अन्य क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उनका निदान ढूंढा जा सके। तो सबसे पहले मैं त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ जो विचार विमर्श किया उसके मुख्य बिंदु आपके अनुसार क्या है?
1: देखिए, ये पहली बार था ब्रिक्स के इतिहास में जबकि ब्रिक्स के सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा का आयाम बढ़ा दिया गया, विस्तार दिया गया, इसका स्कोप बढ़ा दिया गया। पहले जब सिक्योरिटी की बात होती थी तो सिर्फ यही होता था कि सिक्योरिटी का मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो एक देश की सेना दूसरे पे हमला न करे, उनसे सुरक्षा, या ज्यादा से ज्यादा टेररिज्म से या टेररिस्ट एक्टिविटीज से जो कि बाहर से होती है, पोषित होती है बाहर से, उनके खिलाफ। लेकिन इस मीटिंग में इसका स्कोप बढ़ा करके काफी कुछ कर दिया है, क्योंकि इसमें ये सिक्योरिटी चैलेंज जो है जिस पे ये बहस की गई, जिस पे वार्तालाप किया गया, विचार विमर्श हुआ, वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ट्रेडिशनल पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के अलावा वो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो अभी टेररिस्ट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट इंड्यूस इंस्टेबिलिटी, मतलब जो मौसम में चेंज आ रहा है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो असुरक्षा की भावना या अस्थिरता की भावना आ रही है, उससे एनर्जी सिक्योरिटी सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे देशों के लिए, पूरे विश्व के लिए, खासतौर से जब ये दिखा कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में ऊर्जा का आवागमन कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ, ऊर्जा का आयात निर्यात, और उससे कई देशों में बहुत बड़ी समस्या हुई, तो एक तो ये। दूसरा फूड सिक्योरिटी, आज जहां कुछ तथाकथित धनी देश अधिक उत्पादन को फिर दाम पे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दूध नदियों नालियों में बहा दिया जाता है या फसलें जला दी जाती है, वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के कई देशों में और जगहों पर लोग अभी भी खाने बिना कई जगह भुखमरी की स्थिति, तो ये जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, इसको दूर करने का एक उपाय है कि हम फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ करें। सप्लाई चेन सिक्योरिटी इन दोनों ही मामले में, फिर जो टेररिस्ट नेटवर्क अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर, यूएवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने की भी आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर स्पेस का गलत उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, साइबर स्पेस में आप जाते हैं उनकी सीधी खबरें आप पारित करा रहे हैं, जिससे और ऐसे भी कंटेंट आप करा रहे हैं ताकि लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज के प्रति ज्यादा झुकाव या रुझाव हो, ये सब चीजें इसमें अभी सम्मिलित की गई है बात, और इस तरह से इसका सिक्योरिटी चैलेंजेस का दायरा बढ़
0: जी। यहाँ पर त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जिक्र भी किया सप्लाई चेन का, क्योंकि जो भी युद्ध की स्थिति बनती है और जैसे आपने कहा भी ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ वो हमारे सामने है कि किस तरह से जो देश किसी भी रूप में इस युद्ध में शामिल नहीं थे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, लेकिन सब पे प्रभाव पड़ा, हमारी जितनी भी सप्लाई थी ऊर्जा की वो सारी बाधित हो गई। तो जब हम ब्रिक्स के देशों के बीच में सहयोग की बात करते हैं तो ये जो सप्लाई चेन की समस्या है उसका ब्रिक्स के सहयोग से किस तरह से उसका समाधान ढूंढा जा सकता है?
1: देखिए, मेरे विचार से ब्रिक्स के सहयोगी देशों या ब्रिक्स के सदस्य देशों को ये चाहिए कि वो ऐसा तरीके ढूंढे कि अगर कहीं पर इंस्टेबिलिटी हो, अस्थिरता हो या फ्लैश पॉइंट हो जहाँ पर युद्ध होने की संभावना हो या युद्ध हो रहा हो, वहां से गुजरने वाले जहाजों या वहां से गुजरने वाली सप्लाई को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। देखिए, ये प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली बात नहीं, वहां युद्ध समाप्त हो गया है जहां तक हमें उम्मीद, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि अगर भविष्य में कहीं कुछ ऐसा होता है तो हम अल्टरनेट सप्लाई चेन की व्यवस्था करें, ताकि ऐसा होते ही हम दूसरे रास्ते से सामान का, गुड्स का, एनर्जी का, ऊर्जा का आवागमन करा सकें।
0: इसके अलावा त्रिपाठी जी, जैसे सुरक्षा की हम बात करते हैं और सारे

0: जो ब्रिक्स के सहयोगी देश हैं उनके बीच में आपसी तालमेल की बात करते हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन मैं फिर से ईरान को संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करके मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे भारत के या ब्रिक्स के अन्य देशों के जो शिप्स हैं या उनपे जो हमारे नाविक तैनात हैं, इस तरह के मामलों में ब्रिक्स के देश किस तरह से आपस में ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं कि वहां पर हमारे शिप्स को या उनमें सवार नाविकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।
1: देखिए, इसमें एक वो बिंदु जिस पर सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग में विचार विमर्श किया वो इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाली जो एजेंसी, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए ताकि वो टेररिज्म को काउंटर कर सके, टेररिज्म को, साइबर रिस्क को, इसको एक सम्मिलित रूप से, एक संयुक्त रूप से मिल करके उसका सामना किया जा सके। ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसी के संदर्भ यह है कि यह अब हमें देखा जाना चाहिए कि जब भी कभी ऐसे समय

0: यूएवी का अटैक हो या सप्लाई चेन बाधित हो, उस वक्त के लिए हमें ये कोशिश करके बना एक संगठन बनाए या कोई उनके एजेंसी का एक कोऑर्डिनेटिंग प्वाइंट बनाए, कॉन्टेक्ट प्वाइंट बनाए, जहाँ की ऐसी स्थिति में तुरंत सारे देशों को खबर दी जा सके और तुरंत उनकी एजेंसी जो है वो चालू हो जाए, वो एक्टिव हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी क्षेत्र में हो रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए, उनका सामना करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनर्स्थापित करते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्वरूप में अगर आतंकवाद हो तो उसका हमें सामना करेंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है ब्रिक्स के जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी 21-22 मई में, और जो एक मीटिंग हुई थी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर 8-9 जून को दिल्ली में इसी साल, उस पर भी विचार किया है। तो अब ये आगे अपरिहार्य हो जाता है कि इन चीजों पर जो विचार हुआ है इसका तत्काल ही कुछ रिजल्ट आना चाहिए, कुछ परिणाम आना चाहिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी इंगित किया है कि हमें अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, हो सकने योग्य है ऐसे समाधानों पर ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि हम इसमें काम जल्दी से कर सकें।
1: जहाँ तक त्रिपाठी जी साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि साइबर के खतरे काफी ज्यादा हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह का एक डिजिटल नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है जिसमें आसानी से कोई सेंध न लगा पाए और ये ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम हो जहां पर हम किसी भी तरह के साइबर हमले को रोक सकें और सूचनाओं के आदान प्रदान से बाकी जितने भी सदस्य देश हैं ब्रिक्स के उनको इस साइबर खतरों से हम बचा सकें, इसके लिए क्या और अतिरिक्त करने की जरूरत है आपके अनुसार?
0: जी देखिए, इसके लिए ये भी कहा गया है कि हमें AI ह्यूमन सेंट्रिक बनाने और AI के गिवन सिक्योरिटी रिस्क जो है उसको खत्म करने के लिए तुरंत ही हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हम यूनिफाइड अप्रोच करेंगे, मतलब एक संयुक्त प्रयास सम्मिलित रूप से हम करें ताकि जैसे ही किसी देश के ऊपर कोई अटैक हो, साइबर अटैक हो, वो अन्य सभी

0: Giorgio Me. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

यसुदास की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म का नाम था अलाप। शब्द रचना थी जयदेव की और संगीत दिया था, माफ कीजिए, शब्द रचना थी डॉक्टर राही मासूम रजा की और संगीत दिया था जयदेव ने।

अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर की आवाज में आपने सुना दूरिया फिल्म का गीत, जिसे लिखा था सुदर्शन फाकिर ने और संगीत दिया था जयदेव ने।

तुम्हारे लिए, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लायलपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया था जयदेव ने। और लीजिए, फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं मान जाइए फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना है नक्श लायलपुरी की और संगीत दिया है जयदेव ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति

0: की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की

0: समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: We had 26 delegates from
2: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और

0: जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
1: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
1: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
0: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
1: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
0: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
1: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
0: जी जी।
1: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। 5वीं जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
0: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से।

0: आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
1: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव, मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
0: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें यह भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
1: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
0: जी,
1: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
0: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
1: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को, वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती

0: होती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हो, आसपास में हो, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
0: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है
0: जी,
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6th से लेकर 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम को बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक
0: जी।
2: फिर
0: जी।
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जैवलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉटपुट जैवलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी तक 19 मेडल्स है जिसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है, और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे।
0: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं।

0: शिवानी, आपके साथ जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा मैं सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, so that's why I work on these stuff and yeah, I want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
0: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, and if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that, but right now I am just focusing on building the solutions, and as of now I am trying to focus on my studies also, as I am a 10th grader this year.
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: It was something that I never dreamt of, and even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
0: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा, और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया, और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया, बताएं अपने बारे में कुछ।
3: तो ये मौका मेरे लिए बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे।

0: कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसे रह जाऊंगा। मम्मी से रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में। फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो तो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको भी, हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ कैन डू, वाले सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था। मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी ना एक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन हो जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट्स रहते मैं चला लेता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया। काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
0: जी
1: है। हम आपसे और जानना
0: जी
1: चाहेंगे
0: जी
1: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में, कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो सीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल।
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत
1: जी, जी.
2: का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता।

0: रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
0: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है।

0: रेडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम। इसमें हम आपको सुनवाते हैं चाइल्ड केयर क्लिनिक छतरपुर के डॉक्टर आरएस त्रिपाठी से ली हुई भेंट वार्ता।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर आरएस त्रिपाठी, चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक एक स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश। जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के बेहतर इलाज हेतु छतरपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक एक स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश। संपर्क करें डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छतरपुर। मोबाइल नंबर 9425304891, 9425304891। हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस विशेष प्रायोजित कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हमारे छतरपुर जिला चिकित्सालय में पदस्थ, लंबे समय तक आप सेवाएं देते रहे और सेवानिवृत्त

सिविल सर्जन हैं और चाइल्ड केयर क्लिनिक भी आप चलाते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, उनके इलाज भी कर रहे हैं और आज हम आपको रूबरू करवा दें। आप जानते हैं पहले भी हम आपकी मुलाकात करवा चुके हैं।

0: जाती हैं। खाने में किसी प्रकार का भेदभाव न करें। अपने भारतीय परंपराएं कुछ ऐसी हैं कि जब घर के सभी सदस्य खाना खा लेते हैं तब महिलाएं खाना खाती हैं और उनमें भी जो बचा खुचा होता है वो बहू खाती है। मॉडर्न परिवारों में ये स्थिति नहीं है, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, पर अपन ग्रामीण परिवेश में तो आज भी वही स्थिति है, उसमें परिवर्तन नहीं है। इसलिए बहू माँ को जो बच्चा जिसके गर्भवती माँ है उसके खान पान का विशेष ध्यान रखें, उसके प्रति बोल चाल का भी ध्यान रखें, उसको मानसिक तनाव ना दे। मानसिक तनाव होने से बच्चे की ग्रोथ में प्रभाव पड़ता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे, इस दौरान बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो उस दौरान कई बार माता पिता नौकरी के कारण या किसी कारण बाहर रहते हैं, तो क्या वो 2 महीने जब उन्हें छुट्टी के मिलते बच्चों को, तो उस दौरान दादा दादी नाना नानी के पास रहना कितना जरूरी है?
0: आजकल एकाकी परिवार हो गए हैं, पति पत्नी दोनों सर्विस में जाते हैं,
1: तेजी से बढ़ रहे हैं जी,
0: और ये एकाकी परिवारों का जो श्रृंखला है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। तो बच्चे दाई

0: उसको खाना खिला देंगे, कपड़े पहना देंगे, लेकिन उसको मानसिक विकास के लिए जो सद्विचार उसके अंदर डालना चाहिए वो कोई नहीं डालता। वो डालने वो कौन डाल सकता है? दादी डाल सकती है, नानी डाल सकती है।
1: जी जी।
0: क्योंकि दादी और नानी पुराने पीढ़ी की हैं, उन्होंने दुनिया देखी हुई है और उनके पास कहानियों का भंडार है, लोक कथाओं का भंडार है, और लोक कथाएं व्यक्ति को जीवन जीने की कला और जीवन शैली सिखाती हैं। सामान्य आचरण कैसे गांव में करना है, कैसे करना है, कैसे परिवार के साथ रहना है, परिवार के साथ क्या व्यवहार करना है, ये चीजें दादी और नानी उसको 3 साल 2.5-3 साल की उम्र से कथा सुनाना शुरू कर देती हैं और उसको पीठ में हाथ दे घूम फेरते हुए कथा सुनाती जाती हैं। बच्चा हुंका देता जाता है, उसका प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास पे और मानसिक उसके सोचने की क्षमता पे बहुत अधिक पड़ता है, और ये चीजों की कमी आज के जमाने में दिखाई देती
1: बहुत ज्यादा दिखाई दे रही
0: है। इस वजह से बच्चे उग्र हो रहे हैं, अपने मन के हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब फिर बड़े होने पर पेरेंट्स कहते हैं कि उनको बच्चों ने हमें वृद्धाश्रम भेज दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये कारण हो सकता है क्योंकि उन्हें संस्कार नहीं मिले।
0: संस्कार ही नहीं मिला है, उनके अंदर उस प्रकार के भाव ही पैदा नहीं हुए हैं, तो वो उन्होंने देखा ही नहीं है कि दादा दादी उसके साथ रहते हैं। तो जब वो बड़ा होता है, उसके बच्चे पत्नी और बच्चे होते हैं, तो दादा दादी के अभाव में वो पला बढ़ा है, तो तैसे ही वो उसको फॉलो करने लगता है और उनको वृद्धाश्रम भेज देता है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि शादी विवाह होते हैं तो आदमी अपनी कार से जाता है। मान लो उसके साले के घर में शादी है, साले के लड़के की शादी है, तो मैरिज हाउस में सीधा पहुंचता है, सीधे मैरिज हाउस से वापस रात में
1: घर
0: हो जाता है, बरमाला पड़ने के बाद वापस घर आ जाता है। तो बच्चों को अपने रिश्तेदारों से जो इनके अपने अपने हैं उनके पास घुलने मिलने का समय ही नहीं मिलता, तो उनके पास जब घुले मिलेंगे नहीं तो लगाव पैदा नहीं होगा।
1: जी जी बिल्कुल। जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के बेहतर इलाज हेतु छतरपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक 1 स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश। संपर्क करें डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छतरपुर। मोबाइल नंबर 9425304891। 9425304891।
0: 3 दिन की शादियां होती
1: थी,
0: मंडप होता था, फिर महीना होता था, फिर टीका होता था। एक ही दिन में सब कार्यक्रम कर लेते हैं, वहीं मैरिज गार्डन में सब कुछ कर लेते हैं, तो रिश्तेदारों का आपसी मेलजोल ही कम गया है। तो मेलजोल बढ़ाए रखने के लिए ऐसा है कि आपको समय निकालना पड़ेगा, तो कोई समय पर निकालना नहीं चाहता है,
1: और धीरे धीरे यही परंपरा रही,
0: यही चीजें जो है
1: बहुत मुश्किल होगा।
0: ये रहेंगी तो सिर्फ अकेला अकेला ही आदमी रह जाएगा, और एकाकी आदमी क्या है, उसका मन विचलित होगा, कभी स्थिर मस्तिष्क नहीं रहेगा, सकारात्मक दिमाग में उसके विचार ही नहीं आएंगे, क्योंकि सकारात्मक लोगों के पास बैठ करके तो सकारात्मक विचार आएंगे।
1: और ये अरस्तु ने कहा भी है डॉक्टर साहब के व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अगर वो समाज में रहेगा तो समाज से बातें करेगा, उसके मन में कोई मान लीजिए मानसिक समस्या है तो वो जिक्र करेगा,
0: बात करेगा, हल निकाल लेगा,
1: और यहाँ अकेला है तो हल का प्रश्न नहीं है,
0: वो लगातार उसी में सोचता रहेगा और मानसिक विकार होगा, रोगी बन जाएगा।
1: ये तनाव और ये सब समस्याएं जो बढ़ गई हैं, ये डॉक्टर साहब यही हो सकता है,
0: एकाकी जीवन एकाकी परिवार का ही एक कारण है
1: जी,
0: कि मनोविकार बहुत बढ़ गए हैं। 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का आजकल जो है मोबाइल देखे कमरे के अंदर घुसा पड़ा, दिन भर मोबाइल में निकाल देता है और कमरे के अंदर बंद है, सामाजिक उसका मेल जोल समाप्त ही हो गया है लगभग। तो ऐसे लोग जो मोबाइल लिए हुए कमरे में घुसे रहते हैं, तो ये एक एडिक्शन है, ये मोबाइल क्या है, एक एडिक्शन टाइप की है, जिस प्रकार से दवा बीमारी की नशेली दवाओं का एडिक्शन हो जाता है, वैसे ये मोबाइल अपने आप में एक नशा है, सोशल मीडिया अपने आप में एक नशा है। देखिए 16 वर्ष के पहले तो बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, मोबाइल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो दिमाग को और हार्ट को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, दिमाग को उत्तेजित करते हैं, दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो पॉजिटिव केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल है वो कम होता है और नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ता है, क्योंकि उसमें वो लड़ाई झगड़ा देखता है, मारपीट भी देखता है, भयावह सीन देखता है, उससे एंजाइटी वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका सिक्रीशन बढ़ता है, तनाव बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन बढ़ता है और पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन घटता है।
1: जी जी।
0: तो बच्चा मानसिक रूप से उत्तेजित रहता है,
1: ये भी एक तरह की बीमारी हो सकती है।
0: बिल्कुल, बीमारी ही है।

0: तरीके से उसका जो सामान्य मानसिक विकास होना चाहिए बच्चे का वो नहीं हो पा रहा है, और ये जो मैंने आपको घटना सुनाई ये उसी का परिणाम
1: है। अगर उसका इलाज कराते तो हाँ, शायद
0: अगर वो सामान्य रूप से रहता इस मोबाइल से दूर हो जा तो उसका एडिक्शन नहीं होता और ये दुर्घटना घटित नहीं होती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब। आगामी समय में 28 जून से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, तो ये कितना जरूरी है हर बच्चे को पोलियो की दवा मिले, 0 से 5 तक का बच्चा पोलियो।
0: देखिए जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को ये जो पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है।
1: जी
0: अपना देश पोलियो से मुक्त हो चुका है और टीकाकरण का इतना अहम इतना बड़ा रोल सामने आया है कि पोलियो तो मुक्त हो ही गए हैं पर बहुत सारी बीमारियां लगभग 99% घट चुकी हैं, 98% तो घट ही चुकी हैं, जैसे टिटनस।
1: जी जी बिल्कुल।
0: जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे जब मैं पीजी कर रहा था 81 में
1: जी
0: तो नियोनेटल नवजात शिशुओं के टिटनेस के मरीजों की संख्या बहुत अधिक थी
1: उस समय
0: मतलब प्रतिदिन लगभग 5-6 मरीज मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं को टिटनेस से भर्ती होते थे।
1: तो क्या उस समय टीका नहीं थी?
0: उस प्रकार में इतना टीकाकरण का विस्तार नहीं हुआ था, इतनी जागरूकता नहीं आई थी। शासन टीकाकरण कराता था लेकिन पब्लिक में जागरूकता नहीं थी। अब शासन ने टीकाकरण को इतना सुलभ करवा दिया है कि गांव-गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ सहायिकाएं रहती हैं, वो घर घर जाके प्रेरित करती हैं, ANM रहती हैं, तो अपने बच्चों को समय पर टीकाकरण जरूर कराएं। क्योंकि उदाहरण के लिए हम बता दें कि नवजात शिशुओं को होने वाली टिटनेस अब दिखाई नहीं देती।
1: जी बिल्कुल ही मुक्त हो चुके।
0: हाँ पिछले मैं 10 साल से कह सकता हूँ कि जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु टिटनेस का एक भी केस मैंने नहीं देखा।
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: कहा कि मैं पहले प्रतिदिन एक नवजात टिटनेस वार्ड अलग बनाया गया था, जिला चिकित्सालय में टिटनेस वार्ड अलग था, मेडिकल कॉलेजों में टिटनेस वार्ड रहा करता था, अब ये वार्ड खत्म हो गए क्योंकि अब टिटनेस कहीं दिखाई नहीं देती।
1: जी जी। और अगर हम बात करें पोलियो के अलावा हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को, क्योंकि अब तो सरकार ने अनिवार्य कर दिए हैं, फिर भी वो समय समय पर टीका लगवाएं, अब तो सुविधा ये भी हो गई है भारत में, आप कहीं दूसरे स्थान पर भी किसी कारण से रहने लगे तो वहां भी अगले टीके आप लगवा सकते हैं।
0: बिल्कुल लगवा सकते हैं। आप पहला टीका अगर आपने यहाँ लगवाया, जन्म का टीका यहाँ लगवाया है, तो यहाँ पर भी आप निवास कर रहे हैं वहाँ पर वो नेक्स्ट लेवल का टीका आपको लगेगा, और आपके पास कार्ड है वो साथ लगाएगी, उसके लिए बाध्यता है लगाने के लिए।
1: जी जी।
0: और टीकाकरण का इतना प्रभाव दिखाई दे रहा है कि कुकर खांसी लगभग समाप्त,
1: बिल्कुल समाप्त हो गई है,
0: खसरे की बीमारी भी लगभग समाप्त है।
1: जी
0: मतलब समाप्त नहीं हुआ है लेकिन 98% की गिरावट आ गई है।
1: जी।
0: क्योंकि अब दिखाई देता नहीं है।
1: बच्चों में पहले चिकन पॉक्स की समस्याएं
0: बढ़ती थी। चिकन पॉक्स तो देखिए अपन लोगों ने देखा नहीं है,
1: सुना है मैंने,
0: सुना सुने का है,
1: बड़ी बड़ी माता
0: चिकन पॉक्स जो होता था वो भी टीकाकरण के द्वारा ही समाप्त हुआ था। अब जबरदस्त अभियान चलाया गया था, स्कूल में जा करके जबरन में टीके लगाए जाते थे, उस टीकाकरण का प्रभाव यह हुआ कि चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी देश से चली गई, मैं समय वर्ल्ड से ही चली गई है।
1: बिल्कुल अब वो बहुत कम मामले होते हैं,
0: कहीं दिखाई ही नहीं देते। चिकन पॉक्स तो भारत में बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता ना कहीं होता है, क्योंकि वो एक संक्रामक बीमारी थी और उसमें मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी बच्चों के।
1: जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के बेहतर इलाज हेतु छतरपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक 1 स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश। संपर्क करें डॉक्टर RS त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छतरपुर। मोबाइल नंबर 9425304891, 9425304891। डॉक्टर साहब हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, एक आपकी पसंद का गाना इसमें हम सुनवाएंगे, तो कौन सा गाना आप सुनते हैं जब क्लिनिक से फ्री होते हैं मनोरंजन के लिए? क्योंकि मैंने सुना है कि मनोरंजन भी बहुत जरूरी है व्यक्ति का मन अगर स्वस्थ है तो देखिए फिर उसका शरीर अपने आप स्वस्थ होता है, और ये जो संगीत है व्यक्ति के लिए बड़ा काम करता है, तो कौन सा गाना सुनवाएंगे आज आप?
0: फिल्म पाकिया का गाना सुना दीजिए।
1: जी कौन सा गाना
0: जो आप पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल चलते चलते कोई यूं ही
0: मिल गया था,
1: सारी चलते चलते बहुत प्यारा गाना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, ये गाना हमने अभी सुना और अगला प्रश्न हम पूछना चाहेंगे, फास्ट फूड खासकर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैगी हो गया और साथ ही साथ इनका चाउमीन हो गया, बर्गर, पिज्जा, ये बड़े और मोमोज, ये एक नई तरह का कुछ बनने लगा है, तो इसके क्या दुष्परिणाम है स्वास्थ्य पर और आगे जो मन है, दिमाग है, उस पर क्या खतरनाक प्रभाव है इसके?
1: देखिए, जो फास्ट फूड मार्केट में मिल रहा है, चाहे आप चाउमीन कहें या मैगी कहें, पिज्जा कहें, देखिए इनमें सब में एक तो फैट की मात्रा बहुत ज्यादा
0: रहे, जिसका कोई लेवल नहीं चेक होता है।
1: और दूसरा उसका कोई लेवल चेक नहीं करता है। दूसरा, वो जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो रिपीट करते हैं, जो कल कढ़ाई में वही तेल डाला गया था, जो बचा अगले दिन भी उसी को ही डाल दिया था, उसी को पुनः मिक्स कर देते हैं, फिर पुनः रिसाइकल किया हुआ तेल होता है, ये हानिकारक होता है बॉडी के लिए,
0: जिससे क्या है,
1: बॉडी में एलडीएल की मात्रा बढ़ती है और एचडीएल की लेवल घटता है, ये शरीर के लिए हानिकारक है बहुत अधिक, उसमें केमिकल्स रहते हैं और वो बॉडी के लिए सभी अंगों को हानिकारक होते हैं, खासतौर पर लीवर, गुर्दा, हार्ट और रेटिना, ये सबको प्रभावित करते हैं, आंख की रेटिना को भी प्रभावित करते हैं। हम कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं कह रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि ये जितने पैकेट फूड होते हैं इनमें जो केमिकल मिला होता है उसी का स्वाद होता है और वो हानिकारक होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब खासतौर पर आजकल बच्चे, उनका पेट में दर्द हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को एसिडिटी की समस्या हो रही है, वो एसिडिटी की समस्या पैकेट बंद फूड।
0: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आगामी समय में 1 जुलाई को हम सभी डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, तो क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? एक डॉक्टर हम अगर कहें तो भगवान के रूप में
1: डॉक्टर सहयोग करें, अपना भरपूर प्रयास करता है कि मरीज को ठीक से जल्दी ठीक कर सके, को राहत मिल सके, लेकिन मैंने अपने पर्चों में लिखवा रखा है कि वी ट्रीट ही क्योर्स, हम तो इलाज करते हैं, भगवान ने हमें इतनी क्षमता दी है कि हम इलाज कर सके, लेकिन जीवन बचाना तो भगवान के हाथ में है। तो जब कहीं कोई ऐसी दुर्घटनाएं जिला चिकित्सालयों में हो जाती हैं, तो डॉक्टर लापरवाही उसकी ना मानी जाए, वो प्रकृति, वो ने भगवान ने वो बना रखा है कि उसमें डेथ होना थी तो हो गई। अब एक्सीडेंट में लोग आते हैं और कई बार उनकी डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, तो इस डॉक्टर को भी मनुष्य ही माने, बशर्ते कि इतना है कि वो उन चीजों को जानता है जिससे उसकी तकलीफ घट सकती है, जीवन बचाने वाली औषधियां वो दे सकता है, लेकिन औषधि कितनी प्रभावी होगी उसके शरीर पर निर्भर करता है, शरीर की स्थिति पर निर्भर करता है, और भगवान ने चाहा तो बच जाता है, अगर ईश्वर नहीं चाहता है तो नहीं बचता है।
0: बिल्कुल। डॉक्टर तो अपना पूरा प्रयास
1: करता है कि बच्चे मरीज को किसी हालत में बचा लिया जाए।
0: जी। डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर में एक्सीलेंस स्कूल के पीछे छतरपुर में है, तो कैसे आप हमारे बच्चों का इलाज कर रहे हैं और सभी का इलाज करते हैं, कुछ आप बताएं।
1: देखिए, हमारा तो सवेरे 8 बजे शुरुआत हो जाती है, मैं परामर्श करता हूँ, इलाज के लिए अगर भर्ती होने की आवश्यकता है तो उसको भर्ती भी करा देते हैं उचित नर्सिंग होम में और उसका इलाज करते हैं, उसको सभी प्रकार के टीकों की सलाह देते हैं, नेबुलाइजेशन करते हैं जरूरत है अगर तो, और टीका जरूरत पड़ने पर हम टीका भी जो गवर्नमेंट में नहीं लगते हैं वो टीके भी उनको उपलब्ध कराते हैं और लगवाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: मेरा देखने का समय सुबह 8 बजे से किसी भी समय रात्रि 8 बजे तक रहता है, जब मैं नहीं उपलब्ध होता हूँ तो मैं लिख देता हूँ उसमें कितने देर के बाद आऊंगा। जन्म से लेकर के 18 साल तक के बच्चों का, 17 साल तक के बच्चों का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ।
0: बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं से ये अपील करेंगे, देखिए बहुत लंबा अनुभव डॉक्टर साहब का है और कोई भी बच्चा अगर परेशान है तो वो आए डॉक्टर साहब से सलाह ले और अपना परामर्श, जो भी ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो करवाए तो निश्चित रूप से वो भी स्वस्थ रहेगा।
1: युवाओं का कर्तव्य है कि अपने पेरेंट्स को
0: जी
1: अपने साथ रखें ताकि आपकी पीढ़ी उनसे कुछ सीख सके।
0: जी। और अगर आपने जो कदम उठाया माता पिता के प्रति तो आप भी तैयार रहिए फिर।
1: जी हाँ, जैसे आप अपने माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे तो जो आपकी संतान आप देखेगी वो नेचुरली उसी को रिपीट करेगी।
0: बिल्कुल। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा
1: तो जो आप अच्छा करिए बच्चे अच्छी चीज सीखेंगे, आपको रिटर्न बाद में रिटर्न अच्छा मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा।
0: बिल्कुल। और जैसे कहा गया है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा,
1: सही बात,
0: अगर आपके धर्म और आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर धीरे धीरे आपकी जो कीर्तियों बढ़नी है, इसलिए संसार में यही रह जाना है कि आपने किया क्या है, ये नहीं रहना है कि आपने अपने लिए क्या किया, आपने दूसरों के लिए क्या किया है, ये सबसे
1: महत्वपूर्ण है कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। और जब आदमी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो जरूर सोचता है कि मैंने अपने जीवन में क्या खो दिया, मैंने क्या नहीं दिया,
0: उस समय फिर हम कुछ नहीं करते,
1: फिर उसको कुछ करने लायक नहीं रह जाता, और वो सोचते ही रह जाता है कि मैं कहाँ चूक गया, कहाँ मेरे बच्चे क्यों बर्बाद हुए,
0: बिल्कुल
1: क्यों मेरी संतान बर्बाद हुई, जिसके लिए वो पछताता रहता है। तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करें, सकारात्मक रूप में करें, सामाजिक रूप में करें, अपने खुद के आचरण अच्छे रखें, आपकी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के आचरण अच्छे रहेंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण सलाह है और ये बिल्कुल इतनी अमृत रूपी सलाह है जो व्यक्ति अगर इस समय में समझ गया तो उनका जीवन पूरा धन्य हो गया। ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। ये डॉक्टर का परम कर्तव्य रहता है कि कोई भी मरीज हो उसका प्रथम कर्तव्य है कि ठीक हो जाए।
1: मेरा भी यही रहता है कि मैं सिर्फ इलाज भर नहीं करता, मैं उनकी मूल समस्याओं पर भी
0: जी जी
1: विचार करके उनको सलाह देता हूँ कि ये कहाँ
0: बिल्कुल
1: ये कमी है, उसको कैसे सुधारा जाए।
0: बिल्कुल, और अगर वो मूल जड़ ठीक हो गई तो व्यक्ति का बिल्कुल सब कुछ
1: सब सही हो जाता है।
0: जी जी, तो आज श्रोताओं हमारे बीच थी डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय छतरपुर, और आज इस बातचीत को आप सुनेंगी और जरूर लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे बीच आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जो आपने हमें

0: कर दिया यहाँ आकाशवाणी में आकर बोलने के लिए, और मैं जो कुछ भी कह सकता था इस थोड़े समय में मैंने अपने समाज के लिए कुछ बोला है उसमें उसका लाभ उठाएं। कोई दिक्कत हो कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जन्म से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के बेहतर इलाज हेतु छतरपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक 1 स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश। संपर्क करें डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छतरपुर। मोबाइल नंबर 9425304891। 9425304891। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, पूर्व सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय छतरपुर, चाइल्ड केयर क्लिनिक रामाजी नगर एक्सीलेंस क्रमांक 1 स्कूल के पीछे छतरपुर मध्य प्रदेश।
2: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है आपके पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन का। तो लीजिए, मन भावन कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त संजय खरे। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने ये गीत सुना मिस्टर नटवरलाल से। आवाजें थी लता मंगेशकर, किशोर और साथियों की, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने, कोहका भिलाई से मोरस चंगेल, अनिल कुमार और अजीत कुमार। इसी गीत के लिए हमारे पास ये पोटिया कला दुर्ग से मेल आया है, संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू का। इसी गीत को पसंद किया है मां बिमलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। स्मृति नगर जिला दुर्ग से पसंद करने वाले श्रोता सुरीत, रमेश, तारा, विद्या साहू, जितेंद्र, किशन, सुनीता, ऋषिवन, नीलकंठ, चंद्रहास, हीरेंद्र, संजीवन, त्रिलोक कुमार मास्टर और रणजीत सिंह साहू का। इसी गीत को पसंद किया है गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा ने। हमें मेल पर इसी गीत के लिए फरमाइश जो प्राप्त हुई है, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्षी की। तो लीजिए हम अब आपको सुनाते हैं हमारे श्रोताओं की पसंद का अगला गीत।

आपने जो हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर गीत सुना वो गीत था फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। अनजान के लिखे गीत को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। इसी गीत को पसंद किया था मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता गौड़, कर्ण, रिया, जया और दर्शन भाई ने। हमारे पास मेल आया था इस गीत के लिए जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का। लीजिए हम आपको फिर सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर।

अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो गीत था फिल्म एतबार का, आवाज़ें थी आशा भोसले और भूपिंदर की, शब्द रचना थी हसन कमाल की और संगीत दिया था बप्पी लहरी ने, पसंद किया था हमारे इन श्रोताओं ने। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास और आशा देवी ने, मां नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोठी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से पसंद करने वाले श्रोता थे राकेश, पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन, द्वारकीबाई सेन, इंदौर लिमबोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषाबाई चौधरी और उनके परिवार के लोग। इसी गीत को पसंद किया था डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर ने। ग्राम बिडोरा तहसील सेवदा जिला दतिया से पसंद किया था लोकेन्द्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश सिंह गुर्जर और उनके परिवार के लोगों ने। वडिंग खेड़ा पंजाब से पसंद करने वाली श्रोता मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और उनके परिवार के लोग, और इसी गीत को पसंद किया था। हमारे पास मेल आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। और लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं हमारे श्रोताओं की पसंद पर बरसात की रात फिल्म का गीत। आवाज दी है मन्ना डे, आशा, बातिश और सुधा ने, शब्द रचना है साहिर की और संगीत दिया है रोशन ने, पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ने इसी गीत को पसंद किया है। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास और आशा देवी ने। मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन बेगम, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। इस गीत के लिए हमारे पास मेल आया है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीर और माहिरा नूर का, और इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे श्रोता खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने, और इसी गीत की फरमाइश की है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी ने। तो लीजिए हम आपको सुनवाते हैं हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर मन भावन कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश।

इसी गीत के साथ हमारे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर गीत मेरे मन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
3: It is really our responsibility.
4: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
3: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
2: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएस

एसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: In another fixture, Bosnia and Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेब और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेब 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की संध्याकालीन सभा संपन्न होती है। कल अपनी प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए